0: Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
5: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: Floors clean,
10: check.
9: Windows clean,
10: check.
9: Kitchen clean,
10: check.
9: Air ducts clean.
10: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
6: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
14: डील कहाँ?
13: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
5: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
15: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

बताऊंगी आपको. काफ़ी सस्पेंस में रखा है मैंने कि आज कौन सा दिन है. August 31st है, ये तो सबकी घड़ियों पर घड़ी या जो सेलफोन है उसमें आ जाता है लिखा. मगर दिस टुडे इज एक्चुअली इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट एंड इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द अफ्रीकन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड. अफ्रीका के भी बहुत सारे, अफ्रीका कई बार हम लोग मीन्स हमारी मेरी अपनी आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बट आई सीन दैट इन जनरली बिकॉज द कई बार ऐसा साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के लिए होता है कि लोग मिक्स कर देते हैं. इंडियन कल्चर में तो बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि फॉर आउटसाइडर्स वी आर ऑल द सेम, बट दैट इज नॉट ट्रू. वी हैव सो मेनी डिफरेंट सब कल्चर्स एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, लॉट ऑफ अदर कल्चर्स, यू नो, सो इट्स नॉट लाइक जस्ट वन काइंड ऑफ कल्चर. अफ्रीका के तो बहुत अलग अलग कंट्रीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं आसपास की कंट्रीज में, लेकिन द कल्चर्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. इट्स अ वेरी कलरफुल कल्चर, काफ़ी कलरफुल म्यूजिकल कल्चर है एंड कुछ इरेजर भी हुए हैं थैंक्स टू कॉलोनियलिज्म अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इट इज़ स्टिल यू नो देयर लॉट ऑफ रिवाइवल हैज़ हैपन्ड एंड लॉट ऑफ एथनिक अफ्रीकन कल्चर्स को फिर से बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है दैट यू नो प्रिजर्व करने की. एंड सो दिस इज अ डे, टुडे इज अ डे. सो इफ़ यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ फ्रॉम अफ्रीका, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम नाइजीरिया, घाना, सो इफ़ यू हैव सम जो घाना कंट्री है, सो इफ़ यू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम अफ्रीका एंड यू नो डेफिनेटली टॉक टू दैम ईदर टुडे और सम अदर डे, बट इफ यू टॉक टू दैम टू सम अदर डे टेल दैम दैट August 31st इज देयर डे. क्योंकि पारो ने ऐसा कहा है, पारो ने नहीं, इंटरनेट ने ऐसा कहा है.

दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स, या अगर आप H-1B पर हैं, F-1 पर, L-1 इनमें से किसी वीसा पर, या फिर किसी और नॉन इमिग्रेंट वीसा पर हैं एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीसाज एंड फैमिली एम्प्लॉयमेंट वीसाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, एक्चुअली उनको आप वेबसाइट पर तो जा सकते हैं, बट यू कैन एक्चुअली ईमेल देम info@seemamehtalawfirm.com. तो यस, अगर आप उनको ईमेल करेंगे सो यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीसा प्रोग्राम. सो अगेन दैट इज info@seemamehtalawfirm.com, विच इज द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता. So, and I'm going to tell you a little bit more about what is special about today's day. Kyunki jinhone abhi join kiya hai, unhe bata dun that thodi der pehle main ye keh rahi thi, because I have been with you all for we're continuing from the last show, ki aaj ka jo din hai mujhe bada interesting lagta hai. Kyunki aisa kam hota hai, mujhe aisa lagta hai ki ek din hai jo khatam ho raha hai aur shuru bhi ho raha hai, like both are together, shuruaat aur end jo hai wo together, as if it's like a circle, and I find that वेरी इंटरेस्टिंग. जो आज का दिन है 31st August है, और कुछ चंद घंटों में हम सितंबर में मूव हो जाएंगे 12 बजे के बाद. एंड हैविंग सेड दैट, टुडे इज मंडे, तो इसका मतलब है कि ये शुरू हो रहा है, ये हफ्ता शुरू हो रहा है. तो कुछ शुरू हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ जिंदगी ऐसी ही होती है. मुझे ऐसा लगता है कि हर पल ऐसा ही होता है जिंदगी में, कि लॉट ऑफ ऑपोजिंग थिंग्स आर देयर, और आज तो बहुत ही क्लियरली एक ऑपोजिंग थिंग है, विच इज द बिगिनिंग एंड द एंड. लेकिन वी आर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग, चाहे शुरुआत हो रही हो या एंड हो रहा हो वक्त का, लेकिन वी आर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग हेयर ऑन फनिशा रेडियो एंड ब्रिंगिंग यू समथिंग इंटरेस्टिंग. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू. इट इज़ अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ आवर लिसनर्स, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिव टाइम चल रहा है, समय बहुत सारे फेस्टिवल्स कुछ निकल गए हैं, कुछ आने वाले हैं. गणेश चतुर्थी बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो आने वाली है. फिर तो देन यू नो इट्स अ सीरीज, फिर तो चलती जाएगी एक के बाद एक. जन्माष्टमी, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे. एंड राखी रिसेंटली निकली है, विच इज़ अ वेरी स्पेशल फेस्टिवल फॉर मी, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली. तो राखी बहुत ही जोरों शोरों से मनाई जाती है इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली आई मीन एंटायर इंडिया, यस, बट डेफिनेटली इन द नॉर्दर्न एंड सर्टेन बेल्ट इट्स वेरी वेरी वेरी बिग फेस्टिवल. सो इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम. एंड इफ यू हैव अ सॉन्ग दैट यू वांट टू डेडिकेट टू समवन स्पेशल, यू नो द नंबर टू कॉल 972355555 बारो इन द हाउस.

ये कौन सा इनके पास चिराग है कि जो भी मांगती वो आ जाती है, हमारे पास तो नहीं आती है ऐसी. बट आई जस्ट फाइंड दिस सो एनीवे सो फन, यू नो, एंड स्पेशली दैट हैदराबादी का जो एक्सेंट है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता. मैं हैदराबाद, एक्चुअली आई लिव्ड इन हैदराबाद फॉर 3 इयर्स एंड आई आई फाइंड इट सो फैसिनेटिंग. मैं ये कई हमारे लिसनर्स हैं हैदराबाद के जिनसे मैं बात करती हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ, मेरे तो बहुत दोस्त हैं हैदराबाद के, एंड आई वॉज देयर फॉर 3 इयर्स ग्रोइंग अप. एंड एज एन आर जे आई थिंक हम लोग बहुत, जो हम रेडियो होस्ट होते हैं, मेरे साथ तो बचपन से है, रेडियो होस्ट मैं अभी बनी हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस एंड अट्यून टू वॉइस. आवाज़ें जो हैं मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं, और कई बार मुझे लगता है मैं लोगों के चेहरे भूल जाऊँ, लेकिन आवाज़ कभी नहीं भूलती. सो आवाज़ इज समथिंग दिच आई एब्सोल्युटली, आवाज़, एक्सेंट, बोलने का तरीका मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. और मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स, बहुत सारे हैं मेरे फेवरेट, बट वन ऑफ माई फेवरेट्स इज हैदराबादी एक्सेंट. मतलब ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलने का यार. बट विद दैट मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है जिमरान साहब की. सो जिमरान साहब, आपका नाम बड़ा अच्छा है, मैंने आपको कहा भी अभी. सो आई एम गोना प्ले दैट, एंड अगेन इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड यू कैन कॉल अस.

झूम झूम के गाने का मौसम आ गया है. लॉट ऑफ फेस्टिव यू नो फेस्टिवल्स आर कमिंग एंड इफ यू हैव अ स्पेशल समवन दैट यू वांट टू बाय समथिंग रियली स्पेशल लाइक डायमंड्स, वेल लेट मी टेल यू, तनिष्क के बारे में बताती हूँ आपको. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क. डायमंड्स आरंट जस्ट फॉरएवर, दे आर इवन मोर इररेसिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज of old gold above 18 carat. So celebrate this beautiful festive season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. So yes, aap bahut sare hamari hum information aapko dete hain khane ki and gifts ki. So you have no reason not to take your special someone outside and treat them or buy something special. Aur waise bhi bahut hi ek special time is samay chal raha hai. Ye fall ka jo time hota hai, isme mujhe India ke bahut zyada yaad aati hai. Because I feel that this is the time jab Delhi mein, and I'm sure which wherever you are, you may have a different, little different experiences. Kyunki kai jagahon par mujhe lagta hai India bada interesting hai. Kai jagahon par kuch tyohar zyada josh shor se manaye jaate hain versus the other. For instance, Delhi mein Rakhi bahut josh shor se manayi jaati hai. Janmashtami, yes, kyunki Mathura jo Shri Krishna ji ki janam bhumi hai, wo bilkul paas hi hai Delhi ke, to Delhi mein bahut hi josh shor se Janmashtami manayi jaati hai. One of my favorite festivals जो मैं बहुत मिस करती हूँ आउटसाइड ऑफ दिल्ली, मुझे लगता है इतना नहीं मनाया जाता कई जगहों पर. ऑब्वियसली मथुरा वगैरह में तो मनाया जाता है. सो यस, बट व्हेन इट कम्स टू गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, मुंबई में और साउथ में, दिल्ली में नहीं इतनी, लेकिन उन जगहों पे बहुत ज्यादा. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेस्टिव टाइम जो हमारा चलता रहता है नवंबर तक. लेकिन आज का दिन एक और खासियत है, विच इज लाइक से नो टू ड्रग्स. दैट इज अ डे, इट इज एक्चुअली इट इज एन इंटरनेशनल डे विच इज फॉर दैट. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस के लिए आज का दिन, टू मेक श्योर स्पेशली यंगस्टर्स को ये अवेयरनेस आप प्रदान करें दे, स्पेशली इफ यू हैव इन योर फैमिली, दैट यस लिव योर लाइफ फुलेस्ट फुली एंड से नो टू एनीथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम इन एडिक्शन. और एक और है दिन जो आज का दिन नेशनल डे है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी सी देर में. फिलहाल ये गाना रीमिक्स वाला मेरी तरफ से.

ये तो मेरा मोटो है, साढ़े साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, अगर फन ईशे के साथ रहेंगे, पारो के साथ रहेंगे तो ऐश ही करेंगे, क्योंकि दैट इज आवर मोटो, हैव फन एंड लेट अदर्स इंजॉय एंड मेक श्योर अदर्स इंजॉय, मतलब करना पड़ेगा, अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, हमेशा से ही थी वैसे तो, लेकिन विद सोशल मीडिया विद थिंग्स that you know AI and all those things, like bahut zyada technology fast badhti ja rahi hai, itni zyada ho rahi hai that it's almost like an explosion, and a lot of times it's very hard for our human brain, jo hamara insaan ka dimag hai abhi tak bada mana jata tha usko, lekin ab bada catch up nahi kar pata hai aur AI ko to I think catch up karna waisi AI ki technology itni fast bad rahi hai ki bahut mushkil hai, so it feels like everything is going very fast in the nutshell, it actually feels that way. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ भाग रहा है, वर्क इज़ बिजी, लाइफ इज़ बिजी, फैमिली इज़ बिजी, घर सब कुछ, सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक अ स्टेप बैक एंड टेक डीप ब्रेथ, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अबाउट गोइंग फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह भाग भाग कर पहुँचना नहीं है, आराम आराम से इन्जॉय करते हुए ये जर्नी है जाना तो सबने एक ही जगह एंड में, लेकिन जर्नी है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको मत भूल जाइए इस भीड़ भाड़ और भाग दौड़ में ये कहती है पारो, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, और ऐश करने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छी अच्छी जगह, बढ़िया बढ़िया जगह आप खाना खाइए और एंजॉय करिए, जैसे कि फ्लेवर लाउंज। द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग ऑल इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे विच इज फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेज, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स दैट यू विल कीप गोइंग बैक टू, एंड दिस इज ऑल जस्ट फॉर $24.99 पर पर्सन. Enjoy the buffet on Saturday, Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. Family ke saath jaiye, doston ke saath jaiye, and make your weekend memorable, delicious at the Flavor Lounge. Inka address hai 5855 Preston Road, Frisco. The Flavor Lounge is where there is good food, great memories. Aur aaj ka din hai kuch khas, bataungi aapko. Let's listen to some more songs. And again, as I said, I can play a few songs of your choice. 9 baje tak hoon main yahan par. I actually have giveaways as well, jo hum karne wale hain shuru. Lekin ye gana suniye, ek chote se break mein jaiye aur lot kar yahi aaiye, kyunki paro intezaar karegi.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn.
2: समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर।
3: Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
4: जिंदगी एक रंगमंच है
0: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 9728971530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज़ इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं ही तो।
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने कुछ फिल्मों की बातें नहीं करी हैं. वैसे तो हम फिल्मों की बातें इनडायरेक्टली तो करते ही हैं, क्योंकि हम गानों की बातें करते हैं, हम गाने सुनते हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट चलाते हैं, एक्टर्स और बहुत सारे आर्टिस्ट की बातें करते हैं. लेकिन एनी फिल्म दैट आई हैव सीन रिसेंटली, ऐसा ऐसी कोई एक्साइटिंग फिल्म मैंने आई थिंक रिसेंट बहुत टाइम से शायद नहीं देखी, लेकिन रिसेंटली देखी है. एंड दैट इज़ मुझे अच्छी लगी वो फिल्म, विच इज़ मैं वापस आऊँगा. एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, और नसरुद्दीन शाह है उस फिल्म में. एंड इट टॉक्स अबाउट पार्टीशन, बट ऑल्सो इन रेफरेंस टू करंट टाइम. आज की डेट में जो 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान को जो अलग किया गया था, उससे आज तक क्या इम्पैक्ट हो रहा है. एंड इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट बिकम लाइक एन इंटरजनरेशनल सिचुएशन, क्योंकि जो इस तरह का जो ट्रामेटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि उस समय काफ़ी ट्रामेटिक सिचुएशन रही थी, उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स रही है, वायलेंस रहा है, एंड बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट, कंसिडर्ड द मैसिव डिस्प्लेसमेंट एवर इन द वर्ल्ड, जो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है लोगों का, इतना कभी हु नहीं हुआ. सो दिस वॉज अ वेरी बिग थिंग इंटरनेशनली. येस, इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए तो है ही. और चूंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, एंड देर लॉट ऑफ द एरिया दैट आई ग्रू अप वॉज ऑल जो उनके पेरेंट्स, या ज़्यादातर तो दादा वगैरह, दादा दादी उस तरह के लोग, नाना नानी उस पार से आए थे, बॉर्डर पार से, यू नो, लाहौर से या फिर अलग अलग जगहों से, वहाँ से. सो रावलपिंडी एंड मुल्तान, सो दोज आर द प्लेसेस आई ग्रू अप हियरिंग एंड देयर स्टोरीज. तो ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी, द वे दे कनेक्टेड द प्रेजेंट टाइम विद द हिस्ट्री. तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहती थी, क्योंकि कभी कोई नई चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, चाहे मैं पढ़ती हूँ या मैं देखती हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद यू. एंड विद दैट आई डू वॉन्ट टू शेयर वंस अगेन, क्योंकि जब मैं पिछला वाला शो कर रही थी, बिकॉज आई एम कंटिन्यूइंग, आई टॉक अबाउट सोनू निगम, लेकिन हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं, हमें शायद अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले अगर वो मुझे नहीं सुन रहे थे, और अगर सुन भी रहे थे तो फिर से सुनना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट सोनू निगम साहब इज ब्रिंगिंग. आई एम गोना टॉक अबाउट इट इन अ लिटल बिट.

99 की एल्बम का ये गाना है. एंड दिस वॉज द टाइम वेन सोनू निगम वॉज गेटिंग रियली रियली वेरी वेरी पॉपुलर. एंड उनके गाने चाहे वो एल्बम के हों चाहे मूवी के हों बिल्कुल टॉप पर जा रहे थे. और अभी थक ही इज अ रेवोल्यूशन. ही हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशन आई डू बिलीव इन इन सिंगिंग एंड इन म्यूजिकल इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री. और जो ये रेवोल्यूशन है वो लेकर आ रहे हैं डैलस में. सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. ये एक्सपीरियंस करने के लिए सर रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करने के लिए लाइव आप कहाँ जाएंगे बताती हूँ आपको. और कब जाएंगे ये भी बताती हूँ. सैटरडे सितंबर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके फेवरेट गाने एंड दैट आइकॉनिक मेलोडियस बिल्कुल शहद की जैसी आवाज ऑल लाइव. टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर. ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं नंबर विच इज 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव आने वाला है आप लोगों के लिए. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर Phanesha Network. And, you know, there's one thing that Sonu Nigam does, which I think very, very few singers can do, is the singing mimicry. Not only he has his own very strong voice, lekin wo dusro ki awaze aur dusro ke accent, dusro ki mimicry bahut achhi karte hain. So, there is a new song which is catching a lot of sensation. Haryanvi gana hai, Sonu Nigam sahab ne gaya hai. Aur fusion keh sakte hain aap ise, it's a fusion. Waise Sonu Nigam sahab Faridabad ke hain. दिल्ली के पास हमारे फरीदाबाद तो यस बट ही इज रियली गुड व्हेन इट कम्स टू लाइक रियली डिफरेंट एक्सेंट. सो इट्स यू नो नॉट जस्ट हरियाणवी बट लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर.

एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग. और जैसे आप लोग जानते हैं मैं दिल्ली की हूँ, तो मुझे दिल्ली के पास हमारे पंजाब का कल्चर, हरियाणा का कल्चर, ये बिल्कुल मतलब बड़ा हमारे करीब होता है, बिकॉज एक्चुअली मैं फिजिकली करीब होता है. They're just next door neighbors, and we grew up. I grew up with Punjabi and Haryanvi friends. So, very interesting thing. Haryanvi culture is a very strong culture. Women also are very strong in that culture. Men also, बहुत उसके लिए जाना जाता है. मतलब उनको उनसे आप पंगा नहीं ले सकते. गलत बात नहीं वो सहन करते हैं. That is so good about them. And I find this such an interesting fusion. क्योंकि अगर आप Haryanvi proper गाने सुने तो थोड़ी आवाज अलग तरह से होती है. सुनो निगम साहब की कुछ ज्यादा सॉफ्ट और बड़ी हनी सी कह सकते हैं आप, एकदम शहद सी आवाज है. एंड उसमें हरियाणवी गाने यूजली उस तरह से नहीं होते, क्योंकि उनका कल्चर जैसे मैंने कहा थोड़ा अलग तरह का है. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूजन एंड बट पीपल आर लविंग इट. सो स्पेशली लविंग इट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड ऑब्वियसली द एक्सेंट इज सो गुड. ही इज डूइंग इट सो परफेक्टली, क्योंकि है ही भाई फरीदाबाद के सोनू निगम साहब. एंड विद that I do want to tell you that you know accidents can happen in seconds. So ye bahut zaruri hai ki aap Umar Khwaja sahab ki information main aapko dun and you keep it with you. It is this segment is brought to you by Umar Khwaja with traffic updates around DFW and accident report. And you know, accident actually can happen in seconds and any time, very unpredictable situation it can happen, it creates but recovering from it unfortunately it takes a much longer. So if you have been involved in a car accident, truck accident or slip and fall, or if you know somebody who has been, or you know, khuda na khasta aisa kabhi ho, so get that information and keep it with you. So let attorney Umar Khwaja handle the legal battle while you focus on healing. He will fight for the compensation that you're entitled to, and you pay nothing unless your case is won. Unka number hai 469-300-5046, or visit attorneyomar.com for your free consultation. और आज का दिन ऑल्सो कौन सा खास है खाने को लेकर, एंड दैट इज ट्रेल मिक्स. जी माई फेवरेट स्नैक इन द US, क्योंकि अब इंडिया में तो मैं ट्रेल मिक्स खाकर नहीं बड़ी हुई हूँ. इंडिया के तो अलग स्नैक्स खाकर बड़ी हुई हूँ, यू नो इट्स लाइक इंडियन स्नैक्स. बट यहाँ पर US में अगर कोई मुझे कहेगा कि मैंने कौन से स्नैक को अडॉप्ट किया है और बड़े प्यार से अडॉप्ट किया, इतना कि मैं कितना भी खा सकती हूँ, दैट इज एक्चुअली Trail Mix. Well, if you are Trail Mix lover like me, today is your day, because it is National Trail Mix Day. August 31st is National Trail Mix Day. Ab to main miss kar rahi hu Trail Mix ko.

0: बताना चाहती हूँ आपको कि ट्रेल मिक्स के साथ साथ बिकॉज टुडे इज नेशनल ट्रेल मिक्स डे, इट इज ऑल्सो एक्चुअली नेशनल ईट आउटसाइड डे. क्योंकि ऐसा हो गया है अब कल्चर, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम वी स्पेंड इनडोर्स, इसलिए तो सबके विटामिन डी कम होते हैं क्योंकि सन हमें ज्यादा मिलता नहीं है एंड मोस्ट ऑफ अस स्पेंड टाइम इनडोर्स एंड एयर कंडीशनिंग होती है अंदर या टेम्परेचर कंट्रोल होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, राइट? बाहर जाके क्यों ये सन वगैरह को, स्पेशली गर्मी इतनी है तो क्यों इतना सहा जाए. एंड बट व्हाट हैपेंस इज वी मिस आउट ऑन द फ्रेश एयर एंड वी मिस आउट ऑन ब्यूटिफुल नेचर दैट वी कैन ओनली सी व्हेन वी स्पेंड रियली वैल्यूएबल टाइम आउटसाइड. तो ये एक चीज, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बाहर भी रखते हैं खाने का, पिकनिक वगैरह लोग का एक ट्रेडिशन मुझे लगता है थोड़ा सा कम होता जा रहा है. दैट इज व्हाट आई फील दैट एक पहले जमाना पिकनिक में बहुत लोग जाया करते थे. इनफैक्ट आई ग्रू अप हियरिंग, माई मॉम इज फ्रॉम मध्य प्रदेश एमपी, तो वो कहते थे कि संडे को उनका एक बड़ा एक वहां होता था कि वो पिकनिक पे जाते थे, मतलब खाना वगैरह पैक करके, एंड ये एक स्टैंडर्ड होता था. एंड आई थिंक दैट कल्चर इज चेंजिंग क्वाइट अ बिट क्योंकि बहुत सारी और एक्टिविटीज ने उसको घेर लिया है. सो दिस इज अ डे August 31st दैट यू रिमेंबर ईटिंग आउटसाइड. एंड अगर आपने अभी नहीं किया है, अभी तो खैर 8 बज रहे हैं, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड वेदर इज नॉट दैट टेरिबल, ट्राई टू सिट आउटसाइड. एंड इफ दे हैव अ प्लेस टू सिट आउटसाइड पैटियो पे, एंड इफ यू कैन ऑन वीकेंड, अगर आप फ्री हैं जा सकते हैं तो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक में जाइए. बाहर कहीं आप हाइकिंग पे जा सकते हैं और अपने साथ खाना लेके जाइए. रिसेंटली वी वेंट टू बैनफ एंड हम लोग वहां पे खाना पैक करके ले जाते थे. मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन, हम लोग वेजिटेरियन है तो खाना नहीं मिलता था इतना. सो दैट वॉज ऑल्सो समथिंग आई फील वॉज सो मच फन की बहुत हाइकिंग करने के बाद फिर अपना बैक पैक खोला, फिर खाना खाया, सैंडविच खाया. सो यस, नेचर के साथ एंजॉय करिए, नेचर के साथ खाइए, एंड दैट इज टूडेज डे. यस, ट्रेल मिक्स की अगर बात करें तो आई डू वॉन्ट से दिस दैट द रीजन आई लाइक ट्रेल मिक्स क्योंकि मुझे नट्स बहुत पसंद है. नट्स जो दे आर रियली यू नो वेरी वेराइटी ऑफ जो नट्स होते हैं, स्पेशली दे आर वेरी गुड फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो ट्रेल मिक्स इस वजह से भी मुझे बहुत पसंद है. थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से कह रही थी कि हरियाणवी कल्चर मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत क्लोज है बिकॉज आई हैव रियली वेरी क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम देयर यू नो दिल्ली के, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एडजस्टेंट है, तो हम अपना ही कल्चर लगता है हमें तो. सो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पीपल फॉर श्योर, यू नो इट्स अ वेरी लैंड के साथ कनेक्टेड है, नेचर के साथ कनेक्टेड है. एंड विथ दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ फिल्म दैट सेलिब्रेट्स दैट कल्चर एंड सेलिब्रेट्स अवर गर्ल्स.
1: बस छोरी समझ के ना लड़ियो,

0: ब्यूटीफुल फिल्म दंगल. और जब भी मैं इस फिल्म की बात करती हूँ, हरियाणवी कल्चर की बात करती हूँ, आई डू वांट टू, बिकॉज आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ सिंगर्स एंड लॉट ऑफ म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री को और बहुत अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है बॉलीवुड को. और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, दे आर फ्रॉम हरियाणा एज वेल, दैट आई हैव स्पोकन ओवर द ईयर्स. बट आई डू वांट टू शेयर, जो शायद मैंने रेडियो पे नहीं शेयर किया अभी तक, बट आई डू वांट टू शेयर दिस, दैट देयर इज अ विलेज दैट आई यूजुअली विजिट, क्योंकि आई नो समबडी फ्रॉम दैट विलेज. वो दिल्ली में रहते हैं एंड आई ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज आई गो टू दैट विलेज हरियाणा का, झज्जर के पास. एक झज्जर जगह है वहाँ पे, उसके पास एक गाँव है. और नेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज स्पेशली टूडे इज नेशनल ईट आउटसाइड डे, सो दैट इज ईटिंग विद द नेचर, कनेक्टिंग विद द नेचर, कनेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड. चाहे आप रेस्टोरेंट में बाहर ही बैठकर खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हवा के साथ, जो सन की रेज हैं, अगर आप दिन में खा रहे हैं या ऑल दैट, यू आर कनेक्टिंग विद दैट. एंड डेफिनेटली अगर आप नेचर में हाइकिंग करते हुए, पिकनिक करते हुए खा रहे हैं, तो यू आर ट्रूली ट्रूली विद इन नेचर, विद इन सराउंडेड बाय नेचर. तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आती है. और वहां का जो जमीन है वो इतनी फर्टाइल है, और वहां का खेतों का जब खाना हम खाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश खेतों से निकल कर वो बनाते हैं, सो दैट टेस्ट इज हेवनली. मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो वहां पर है. एंड दैट इज द फीलिंग आई गेट स्पेशली विद दैट काइंड ऑफ फूड. एंड ऑल आवर लिसनर्स, आई एम श्योर दैट इज नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर स्टेट, ये पूरे ही इंडिया पाकिस्तान के जो हमारे लिसनर्स हैं, जिन्होंने अगर खेतों का, वहां का जो खाना वहां से जो बनता है, जैसे कहते हैं ना फार्म टू किचन, उस तरह का जो खाया है, बिल्कुल एकदम दैट टेस्ट इज सो सो अमेजिंग एंड सो प्योर. एंड विद दैट लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. उसके बाद हम एक छोटे से ब्रेक में चले जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद यहीं लौटेंगे. एंड एक घंटा और मैं आप लोगों के साथ हूं. वी आर डूइंग अ गिव अवे एज वेल, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. आई हैव अ फ्यू अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू शेयर विद यू, एंड इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर, व्हाट यू आर डूइंग ऑन दिस स्पेशल वीकेंड, जिसकी तरह हम धीरे धीरे इंच कर रहे हैं, व्हिच इज लेबर डे वीकेंड. आई एम डूइंग समथिंग वेरी एक्साइटिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, बट व्हाट इज इट दैट यू ऑल आर डूइंग. लॉट ऑफ पीपल मे बी ट्रैवलिंग, प्लीज शेयर. 972355555 एक ही नंबर है हमारे साथ कनेक्ट करने का, जो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं और अपनी कोई फरमाइश बताना चाहते हैं, किसी को विश करना चाहते हैं. और कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है, कई बार हमारे लिसनर कहते हैं किसी को तो विश करना नहीं है, किसी को तो नहीं ये गाना डेडिकेट करना. तो मैं ऐसा कहती हूँ, खुद को क्यों भूल जाते हैं, खुद को डेडिकेट करिए.
1: आज तक सबके सब भूखे फक्कड़ पीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े. बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाभ फटके बाहर आंदे.

0: estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
4: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
4: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
3: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
6: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
2: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
1: Fear not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia!
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
5: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

वेलकम बैक, वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से कह रही थी कि टुडे इज नेशनल ट्रेल मिक्स डे, लेकिन ये किसने शुरू किया, ये किसका ब्रिलियंट आइडिया था कि ये डिफरेंट तरीके नट्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। आई थिंक सम पीपल लाइक सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर नट्स और स्नैक्स एंड सम लाइक अदर्स, तो सबको मिला दो ना, जिसको जो पसंद है वो खा लेंगे। एंड ऑल्सो जो एक चीज जो न्यूट्रिएंट्स एक में नहीं है वो दूसरे में होंगे, सो इट बिकम्स लाइक अ होलसम स्नैक एंड वेरी हेल्दी, स्पेशली फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि आज के दिन ईटिंग आउटसाइड एंड कनेक्टिंग विद नेचर इज द डे, एंड इसके साथ अगर आप ट्रेल मिक्स भी हो आपके पास तो क्या बात है, बिकॉज इट इज रियली डिजाइंड, या ये कह सकते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है वो आउटडोर के साथ कनेक्टेड है एंड हाइकिंग और इस तरह से आउटडोर टाइम स्पेंड करने के साथ कनेक्टेड है। क्या है इसकी हिस्ट्री ये बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, फिलहाल बहाने हम बहुत बनाते हैं।

स्पेशली मेरे जैसे लोग तो बहुत ही ज्यादा बनाते हैं. अगर बाहर जाना है, बाहर जाकर कोई हाइकिंग या इस तरह का करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ना थोड़ा आई रियली लाइक कोजी स्टेइंग इन द बेड. आई एम लाइक वन ऑफ दोज कि सो के अगर आप उठ जाएं तो फिर से सो जाएं, दैट काइंड ऑफ कैटेगरी आई कम. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने लिए भी बोलती हूँ, इनफैक्ट अपने लिए ही ज्यादा बोलती हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि हम चाहे 10 बहाने बनाएं, लेकिन द फैक्ट इज व्हेन वी कनेक्ट विद नेचर, व्हेन वी गो आउटसाइड, एंड दैट इंक्लूड्स मी एज वेल, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी काफी हाइकिंग करी है इन अ रिसेंट ट्रिप, देयर इज नथिंग लाइक इट. इट फील्स दैट यू आर पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर.

हे नाउ सो ट्रेल मिक्स की मैं बात कर रही थी, तो बहुत अलग अलग हिस्ट्री है नेटिव अमेरिकन्स जो उनकी भी एक दे यूज टू यूज अ लॉट ऑफ ड्राइड बेरीज एंड मीट, और उसका वो यूज करते थे आउटडोर, उसमें आउटडोर अगर कहीं जाना है, लंबा रास्ता क्रॉस करना है. एंड बट रियली जो करंट ट्रेल मिक्स है उसकी थोड़ी हिस्ट्री, दो हिस्ट्रीज मानी जाती हैं. एक तो 1910 में बहुत इस तरह के फ्रूटी नट्स और रेजन्स और चॉकलेट को एक आउटडोर की काफी कैंपिंग वगैरह करा करते थे ये होरेस कैफर्ट नाम के इंसान, तो इन्होंने इसको करा. और एक्चुअली एक और इसकी स्टोरी है जिसको गॉर्प कहा जाता है, GORP, एंड दैट वाज स्टार्टेड इन 1968 बाय टू मेन हु वर सर्फर्स, एंड ये भी आउटडोर एक्टिविटीज करते थे. और दिस गॉर्प इज एक्चुअली गुड ओल्ड रेजन्स एंड पीनट, गुड ओल्ड रेजन्स एंड पीनट्स, ये रेजन और पीनट्स को मिलाकर इन्होंने एक ऐसा मिक्स बनाया. तो इसी तरह से अलग अलग तरह के इस तरह के ट्रेल मिक्स, या ये कह सकते हैं कि अलग तरह के इस तरह के मिक्सेस बने. एंड उसके बाद तो फिर उसमें हम लोगों ने हर चीज़ में हम लोग थोड़ा सा मीठा तो डाल ही देते हैं, स्वीट्स, चॉकलेट, M&M एंड ऑल दैट. दैट इज़ प्रॉबेबली द ओनली अनहेल्दी पार्ट ऑफ ऑल दिस. तो वो सब डाल दिया और फिर उसको और ज़्यादा एक्साइटिंग कर दिया, ज़्यादा क्रिएटिव कर दिया. बट यस, ट्रेल मिक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. फनिशर रेडियो, यू आर ऑन ईयर. हाँ जी, अच्छा जी, कट गया, कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हैं 972. यस, आप कॉल कर सकते हैं हमें. एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग जो हमारे ये जनाब ने बस एक हाँ बोल के बस हाँ ही काफी है, एक हाँ ही आई थिंक मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी ना नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फनिशा, हैप्पीनेस, एंजॉइंग लाइफ. तो मुझे लगता है कि हमारे जो एक लिसनर है उन्होंने एक वर्ड से ही बता दिया दैट हाउ मच ही इज एंजॉइंग. यस यस एंड यस.

मुझे मूलियों के लिए बहुत बुरा लगता है, स्पेशली बिकॉज मुझे मूली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. आई थिंक इट्स सच स्पेशली इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कुक इट, बट इट इज सच इनएक्सपेंसिव और सस्ती होती है, आराम से उग जाती है. आई थिंक इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड लाइक अ लोली रूट वेजिटेबल, खेतों में ऑर्डनरी खेतों में आराम से ग्रो हो जाती है. बट इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, इट्स वेरी हेल्दी, इट्स जस्ट अमेजिंग वेजिटेबल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज सस्ती है, चाहे वो कितनी अच्छी है, जैसे कहते हैं ना कि घर की दाल कौन कोई वैल्यू नहीं होती, यू नो इस तरह की, एंड दैट इज हाउ मूली इज ट्रीटेड. इसलिए ये जो जब लोग ऐसे कहते हैं ना, तू किस खेत की मूली है, इस गाने में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये कहता है तू किस खेत की मूली है, एंड दिस इज सच अ कॉमन आइडियम जिसको बोला जाता है. और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट्स कंपेयरिंग समबडी विद मूली मीन्स लाइक कि तू कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग, इसका ये मीनिंग है, क्योंकि मूली तो कुछ भी नहीं है. और जब भी मैं ये सुनती हूँ मुझे बड़ा दुख लगता है मूलियों के लिए, बिकॉज आई फील दैट यस मूली हैव अ बिग ह्यूज प्लेस, इनफैक्ट ऑल द वेजिटेबल्स एस्पेशली द मोर एंड मोर वी आर लर्निंग हाउ हेल्दी दे आर एंड हाउ गुड दे आर. हाँ मतलब ठीक है, अगर सस्ती है चीज़ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कम अच्छी है. एंड विद दैट आई डू वॉन्ट टेल यू दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाई टेक्सस प्राइमरी केयर. फॉर 13 ईयर्स टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी. अब इनका जो ब्रांड है दैट्स ग्रोइंग विद अ न्यू नेम, एंड दैट इज एंड देर ऑल्सो दे हैव अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन विच इज एंड द न्यू ब्रांड नेम इज लनक्सी मेडिकल. सो इंट्रोड्यूसिंग लनक्सी मेडिकल, इट्स फाउंडेड बाय डॉक्टर मंदीप आचार्य. लनक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेट्स पास सर्विसेज ऑल अंडर वन रूफ. अगर आप वहां जाएंगे ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी. और सबसे अच्छी बात है कि दे आर ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM. सो यू कैन वॉक इन, यू कैन ईजिली गो देर, यू कैन वॉक इन एंड नो अपॉइंटमेंट इज नीडेड. दोस्तों यारो, मैं हूं पारो.

आई थिंक शाहरुख खान एक अकेले एक्टर हैं जो खुद के ही फैन इतने जबरदस्त, नॉट ओनली एज द सुपरस्टार इन दिस फिल्म बट ऑल्सो एज हिज ओन जबरदस्त फैन. व्हाट अ वंडरफुल. आई नो ये फिल्म की थोड़ी सी मिक्स्ड क्रिटिक रही है बट मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. द टू एंड ही इज सच अ फिनोमिनल एक्टर व्हेन इट कम्स टू डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स, यू नो ही काइंड ऑफ पुशेस हिमसेल्फ. तो ये मुझे फिल्म की बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है और शाहरुख खान साहब की भी बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है. विद दैट लेट्स लिसन टू वन मोर सॉन्ग बिकॉज वी आर हेडेड इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. लेकिन ये लौट करेंगे यहीं पर. एंड यस आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग गिव अवे फॉर यू ऑल. पारो इन द हाउस.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। वी नीड टू टॉक।
1: अब क्या हुआ?
0: Nothing. It's not you.
1: Oh no.
0: It's the distance.
1: Distance? We live 10 minutes apart.
0: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
8: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
7: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
8: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana।
10: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi। 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiser Way location par। Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya, adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche। Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: It's Hoko.
14: अरे बस भी करो यार।
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है?
0: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
15: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s। September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

पहुंच गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव में, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं 9 बजे तक रहूंगी, तो थोड़ा सा ही वक्त बचा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कॉल्स. और अगला गाना मैं चलाना चाहती हूँ, क्योंकि शाहरुख खान की मैं बात कर रही थी, स्पेशली विद द बिकॉज आई प्लेड दिस जबरा फैन सॉन्ग. एंड शाहरुख खान इज सच एन इंटरेस्टिंग एंड वर्सटाइल एक्टर. मतलब ही ट्राइज टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट इज व्हाट आई फाइंड वेरी फैसिनेटिंग. नॉट एवरी एक्टर डज दैट. बहुत सारे एक्टर्स एक पर्टिकुलर रोल या एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन में ढल जाते हैं. दे फील कंफर्टेबल विद दैट, पीपल आइडेंटिफाई देम विद दैट, एंड देन दे वांट टू स्टिक विद इट, क्योंकि उनको शायद ये भी लगता है कि अगर वो छोड़ देंगे तो उनकी इमेज चेंज हो जाएगी, सो दे डोंट डू दैट. बट शाहरुख खान ने शुरुआत से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी है, एंड दैट इज समथिंग आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. कई बार हिट हुआ है, कई बार फेल हुआ है, बट ही कीप्स ऑन डूइंग इट, एंड दैट इज वॉट मैटर्स. देखिए, हार जीत जैसे कहते हैं ना, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. इसका मतलब हारना जरूरी है. क्योंकि अगर आप हारेंगे नहीं, तो फिर आप अगर आप जीतते ही रहेंगे तो आप बाजीगर कैसे बनेंगे? फिर तो वो बोरिंग बात हो गई ना. विद दैट, सफी का कॉल आया एंड वो शाहरुख खान का कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं चलाती हूँ शाहरुख खान का गाना, विच आई एब्सोल्युटली लव हिज डांस इन दिस एंड एनर्जी.

एक गिव अवे मैं शाहरुख खान के एक सवाल पूछना चाहती हूँ उनकी फिल्म का, लेकिन मेरे पास अभी एक कॉल आई है जो सलमान खान की। देखिए यहाँ पर भी एक डुअल सा चल रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द थिंग। वन थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी सोनू निगम साहब की, क्योंकि वो आने वाले हैं, एंड कुमार सानू साहब की भी बात हुई क्योंकि वो भी आने वाले हैं डालस में। हम वेरी लकी दैट वी गेट द बेस्ट ऑफ ऑल सो मेनी सिंगर्स एंड एक्टर्स एंड। तो जब ये बात हो रही थी तो हमारे एक लिसनर से बात हुई मेरी, दैट यू नो कौन बड़ा है ये नहीं सोचना चाहिए, विच इज़ वेरी ट्रू। आई थिंक पीपल दीज एक्टर्स एंड दीज सिंगर्स आर सच यूनिक बाय देमसेल्व्स, बट आई थिंक ये एक होता है कि किसी का कोई फेवरेट होता है, किसी का कोई होता है। सो यस, लेट्स टेक अ डी टूर, एक छोटा सा डी टूर करते हैं। एंड सानवी ने रिक्वेस्ट करा है ये गाना बॉडीगार्ड का, जो उनको पसंद है, और चूंकि हमारा शो बस थोड़ा सा ही बचा है, वांट टू प्ले द सॉन्ग। But after this, I am going to ask a question in relation to SRK, Fire in the House.

फूडिस्तान, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय फूडिस्तान. अगर आप एक फ्रेश इंडियन ग्रोसरी प्लेस ढूंढ रहे हैं जहां पे हलाल मीट मिलती है, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, मेरा फेवरेट, केटरिंग सर्विसेज एंड इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, देन यू नीड टू विजिट फूडिस्तान इन आबरी. फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस. प्लस दे ऑफर द लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी to on orders just over $30 within 5 miles. तो अगर आपके order $30 से ज्यादा हैं, you can actually within 5 miles you can actually get free delivery as well. So अब आपको अगर एक और चीज आपको बता देती हूँ, yes giveaway तो है ही, but you can mention Funasia to them and get 10% discount. So remember that if you go to Furistan, just mentions Funasia so you can get 10% discount. लेकिन अब giveaway के लिए आपको क्या करना है, मैं ये अगला गाना लगाऊँ. जैसे ही गाना चलेगा, शाहरुख खान का ही गाना है, बिकॉज आई सेड दैट उनकी बात हो रही है, बहुत सारे हमारे लिसनर्स उनके कॉल कर रहे हैं. सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस फिल्म व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ हिज. वेरी इमोशनल, बड़ी अच्छी पिक्चर है, उनके शुरू के दिनों की पिक्चर है. एंड इस फिल्म में आपको मुझे बताना है कि दो और कौन मेन कलाकार हैं. इट इज अ लव ट्राइंगल, सो हु आर द अदर टू एक्टर्स अलॉन्ग विद शाहरुख खान इन दिस. बहुत सारे एक्टर्स हैं लेकिन जो मेन लीड तीन यंग एक्टर्स हैं उनमें एक तो हमारे SRK, बट बाकी दो भी बड़े अच्छे हैं. स्पेशली एक तो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, आई विल टेल यू दैट. बट जैसे ही गाना चलेगा आप जान जाएंगे फिल्म, आपको मुझे दो और मेन लीड एक्टर्स का नाम बताना है. वन लकी विनर, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द लकी विनर, एंड दैट वन लकी विनर इज गोइंग टू रिसीव अ फ्री आइटम फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट विच इज द अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान. नंबर तो आप हमारा जानते ही है 9723555555.

इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म, मुझे ऐसा लगा कि ये तो सबको पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता था. दे वर कन्फ्यूजिंग इट विद दीवाना, जो भी अराउंड उसी टाइम आई थी. यस, बट वो तो शाहरुख खान की फर्स्ट फिल्म थी. ये कभी हाँ कभी ना है, जिसमें दीपक तिजोरी और सुचित्रा कृष्णमूर्ति हैं. और जो भी हमारे लिसनर जिन्होंने मुझे दीवाना का दिव्या भारती, ऋषि कपूर ये एक्टर्स बताए, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जाके ये फिल्म जरूर देखिए, कभी हाँ कभी ना, बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल फिल्म. एंड शाहरुख खान का बड़ा इसमें इमोशनल, बहुत डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन है, और लोगों को बड़ा पसंद आया था. इट्स अ गोवा, गोवन कल्चर बड़ा अच्छा दिखाया है इसमें. मतलब जब भी ये फिल्म देखती हूँ, मुझे मन करता है मैं गोवा जाऊँ फॉरन से. इट्स सच अ ब्यूटिफुल सिंपल फिल्म, बट इमोशनल फिल्म. एंड शाहरुख खान की उस समय के टाइम की बहुत मेमोरेबल फिल्म इसलिए भी है बिकॉज सारी उनकी जो फिल्में आ रही थी, चाहे बाजीगर हो, मतलब बहुत ही ऐसे लग रहा था कि या तो ही इज गोइंग इन वन एक्सट्रीम और दी अदर एक्सट्रीम, जैसे DDLJ है, या तो बहुत ही अच्छे इंसान या बहुत ही खराब इंसान, इस तरह के. एंड बट इन दिस फिल्म ही इज जस्ट द बॉय नेक्स्ट डोर, एंड इट फील्स सो ऑनेस्ट एंड सो ट्रूथफुल. बहुत ही प्यारी फिल्म है. एंड विद दैट बताना चाहती हूँ, अशोक साहब ने जीता है ये फूडिस्तान का प्राइज, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर. सो कंग्रेचुलेशन अशोक जी, ये डी वाइब रेस्टोरेंट की तरफ से आपको एक फ्री आइटम मिलेगा इन ऑबरी, एंड योर डिटेल्स विल बी फॉरवर्डेड टू दैम. एंड विद दैट, चूंकि दीवाना की लोग इतनी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई दीवाना जो ऐसी फिल्म है जिसने शाहरुख खान के लिए लोगों को, दिव्या, नॉट जस्ट शाहरुख खान, इवन दिव्या भारती के लिए लोगों को दीवाना कर दिया था, बिकॉज यस इट केम विद रियली अ बिग बैंग. बहुत सारा लोगों ने उसको पसंद किया. ऋषि कपूर साहब तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, तो उनका और वो इस फिल्म में उनका थोड़ा रोल रिलेटिवली कम है, लेकिन दिव्या भारती और शाहरुख खान की इसमें जोड़ी और उनका काम, पीपल लव्ड इट एंड द सॉन्ग्स एज वेल. सो आई थिंक शायद इस फिल्म ने कुछ और फिल्मों को लगता है ओवर शैडो कर दिया है, लेकिन फॉर अ गुड रीजन. और इस गाने के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दीजिए मुझे इजाजत. आई हैड अ ग्रेट टाइम बिकॉज आई वॉज हेयर फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम. आप लोगों के साथ 6 बजे से हूँ मैं, और आई रियली एंजॉय इट. एंड फिर मिलेंगे चलते चलते. दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो, RJ पारो, साइनिंग ऑफ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Floors clean.
4: Check.
3: Windows clean.
4: Check.
3: Kitchen clean.
4: Check.
3: Air ducts clean.
4: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
5: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
6: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद अ बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
8: उठा ले रे।

0: food crafted to suit every craving, every appetite.
1: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं.
2: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये boxes उठा ले रे.
4: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
3: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
4: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
3: इंडिया तक.
4: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
2: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. Sadia.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, हो।
1: बोरिंग दिनचर्या में
2: घोलिए नए रंग फनेशिया रेडियो के संग।

एक टीम को कोऑपरेटिव बैंड भेजो और वो लॉकर्स भी सील करवाओ अभी के। रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरियां हैं, उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
7: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
7: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
2: Visit www.senadainc.com today.
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye, The Jabu Times available hai ek click par. TheJabuTimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Funasia.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तू नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तू नहीं, अता पता तो बता कोई सुरा बेसुरा ना रफी ना लता खालू प्लीज बता। तू गया तो कहां मेरा सुना है जहां कहीं दिखता नहीं तेरे जूते का निशान सर पीट वहां कोई सजदा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: आकर
2: ओह शिट।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: मार्शमेलो, नाम तो सुना होगा।
1: स्प्रेडिंग लव एंड अंडरस्टैंडिंग विद बेस्ट म्यूजिक 104.9 FM

0: अब तेरी बारी।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरफ हूँ।

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।
2: हे अलेक्सा, डू आई हैव एनी रिमाइंडर्स टुडे?
3: योर रिमाइंडर फॉर टुडे: कंप्लीट ग्रेफिटी वॉल।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Rest a while and run a mile with FunAsia Radio.
1: लॉबी मुंडिया जड़ी टीम जीतूगी उन्हें मेरे वालों पैसे ते बोल्ट ते हार नाला नू मेरे वालों बहुत सारा प्यार।
2: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
2: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: What's up, ladies? Have you met my friend Harry?

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lights, Mike, Bollywood, Fun-Asia. Fun-Asia.
1: हर एक सिटी में

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor. And you're listening to Funasia Radio.
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
4: अजी सुनते हो
5: अजी नहीं एजी सुनते हैं
4: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेशिया रेडियो
6: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फनेशिया
7: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Tuesday morning. Let's go ahead and get the month of September started. सबसे पहले तारीफ सुपर वाले की जिसने दुनिया बनाई चांद सितारे बनाए ज़मीन आसमान बनाए इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम याली मदद एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट गोइंग विद द मंथ ऑफ सितंबर विद कम सितंबर

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
6: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
5: And pistachio lamb chops?
6: Full on flavor ka fusion.
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: Ocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: It's Hoko.
11: Arre bas bhi karo yaar.
10: Arre naya restaurant hai but naam samajh hi nahi aa raha hai.
11: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai?
12: Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
13: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
20: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
22: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
23: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
24: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
22: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
24: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
24: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Continuing with the voice of Sonu Nigam.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
9: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
1: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
10: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया.
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया.
10: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
12: Visit www.senadainc.com today.
13: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney or Khwaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
15: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
16: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
17: डील कहाँ?
16: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
17: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
18: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.
0: Let's go ahead and get started with this hour of the program. Welcome to the show if you are just joining us on this 1st of September. As we welcome this beautiful month with Come September.

देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: अरे यार, घर मिल गया।
3: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
4: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
3: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
4: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
8: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

Number in the studios, 972-235-5555. And thanks for your participation.

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अराय फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, रॉयल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरो।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641।
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
14: हाँ।
13: घर रिलोकेट करनी है?
14: हाँ।
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
14: हाँ भाई हाँ।
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
15: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
16: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
17: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

0: As I get your feet tapping to come September. That's my show for today. Hoping you enjoyed it as much as I love bringing it to you from 7 to 10 every morning, right here on the Fun Asia Network.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
1: कहाँ?
3: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन cuisine at D-Vive, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
0: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
4: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: जिंदगी एक रंगमंच है.
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
8: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

घड़ी मिला लीजिए, 10:07 हुए हैं और आज की तारीख 1 सितंबर। आप सभी को वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू डे ऑफ द ब्रांड न्यू मंथ ऑफ एंड द ब्रांड न्यू वीक दैट वी आर ऑन। हेलो, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM। दिस इज गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन एंड आई विल बी हियर अंटिल 12:30 फॉर ऑल ऑफ यू टू रिक्वेस्ट योर सॉन्ग्स। Indulge in the Zindagi Unplugged segment that we bring for you, जहाँ पे जिंदगी से जुड़े कुछ टॉपिक्स लेकर आते हैं। उसके बाद वाला जो सेगमेंट होता है 12 से 12:30, दैट इज अ सेगमेंट दैट वी टॉक अबाउट एवरी थिंग दैट इज ताज़ा एंड न्यू इन माई फोटे दैट आई यू नो लाइक टू शेयर। यानी कि मेरे, क्योंकि क्या होता है ना कि जो आप सर्चेस करते हो उसी के हिसाब से आपका एल्गोरिथम बनता है और उसी के हिसाब से आपके पास न्यूज़ आती है। तो इसके बाहर अगर आपको कुछ ताज़ा न्यूज़ सुनना है ना, तो आपको मेरे साथ शेयर जरूर करना है। दैट इज व्हाट आई विल से, बिकॉज दैट लास्ट सेगमेंट ऑन माय शो इज ऑल अबाउट एवरीथिंग दैट इज न्यू एंड ब्रांड न्यू इन द स्पेस ऑफ यू नो टेक्नोलॉजी और यू नो ए वायरल रील। इट कैन बी एनीथिंग, इवन ए बॉलीवुड मूवी दैट वी कैन बी टॉकिंग अबाउट। सो यस, एनीथिंग दैट यू हैव इन योर स्पेस ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा और हम आप सब तक पहुँचा देंगे। दिस इज़ गपशप गली विथ मी टू एंड नॉट टू फॉरगेट बिटवीन इट्स 10:45 to 11 दैट आई ब्रिंग फॉर यू सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म्स दैट हैव रिलीज्ड ऑन दिस वेरी डे। दैट इज कौन सा दिन है भाई, 1 सितंबर की तारीख पे जो फिल्म्स रिलीज हुई हैं। सो यस, लेट्स बिगिन दिस शो जिसका नाम है गपशप गली With Me Too.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड दिस पार्ट ऑफ माई शो इज ब्रॉट टू यू बाई एजी फिनटैक्स. लिसन, यू कैन रिड्यूस टैक्स लीकेज, बिल क्लीन फाइनेंशियल्स एंड कंट्रोल योर कैश इफ यू गेट इन कंसल्टेशन विद देम. दे विल लेट यू नो एग्जैक्टली हाउ. वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, agfintax.com इज द वेबसाइट एंड डू रिमेंबर टू गिव देम अ कॉल एंड फाइंड आउट मोर अबाउट ऑल देयर सर्विसेज. इट्स 4699429888. इट्स एजी फिनटैक्स. वंस अगेन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. टेकिंग यू टू दिस नेक्स्ट रिक्वेस्ट, आई नो दिस जेंटलमैन वेन एवर ही कॉल्स ही नेवर लाइक्स टू शेयर हिज नेम, सो डोंट नो हिज नेम. But I do recognize his voice and he definitely brings and adds way more to the show with such musical, beautiful musicals. Dura.

0: तू ठहरा केदारा, सच्ची में कुछ गानों में ऐसी ठहराव होती है कि यू वॉन्ट टू स्टे इन दैट जोन एंड वील कीप यू इन दैट जोन सम विद सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट विल बी प्लेइंग फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर. आफ्टर ऑल इट इज वनीशा रेडियो 104.9 FM. आपके लिए देसी म्यूजिक का सबसे बढ़िया डोज आपको यहीं मिलता है. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई वुड से कीप लिसनिंग टू वनीशा रेडियो 104.9 FM. एक छोटे से ब्रेक पे जाने वाली हूँ. ब्रेक से वापस आने के बाद वी हैव प्लेंटी टू टॉक एंड स्टे राइट हियर.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest. Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: बेटा 95% आए?
9: हाँ मम्मी.
8: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
10: मेरा?
8: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
14: Tracks that put you on the right track.

नवजोत आहूजा का ये गाना वी ऑल नो इट इज़ अ वायरल सॉन्ग. इट इज़ ट्रेंडिंग इन द इंडियन चार्ट, इंडी चार्ट म्यूजिक, द पॉप म्यूजिक, यू नो. सो यस, दिस इज़ अ सॉन्ग दैट आई थॉट आई प्ले फॉर यू. आई डोंट थिंक मैंने ये गाना कभी आप लोगों के लिए लगाया है. सो इट्स माई प्लेजर टू प्ले समथिंग हटके इन दिस सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज़ गपशप गली विथ मीठू. यहाँ पे आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि हुसैन पंजवानी साहब ड्रीम होम मॉर्गेज से आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड एडवाइसेस शेयर करते हैं. मंडे को मेरे शो पे 10:30 बजे ही इज़ ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. और बहुत सारे जो मैंने कहा ना एडवाइसेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, या अगर आपको अपग्रेड कराना हो, रीफाइनेंस करवाना हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो, और आपके अपने लिए अगर पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो ये एक स्मूथ और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस आपके लिए लेकर आते हैं. ड्रीम होम मॉर्गेज, दे हैव बीन अराउंड सिंस 1998 एंड दैट इज ए यू नो एंडोर्समेंट ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ वर्क. सो लेट्स रिमेंबर टू लॉग ऑन टू dreamhomemortgage.com टू फाइंड आउट मोर and share it with your friends and family. 972-245-5626 is that number. Ye hai Gapshap Gali with me too.

It is Gupshup Gali with me too. What a beautiful unplugged version of the Paresh Pahuja song, Duro Duro. I hope you enjoyed it. कुछ हटके लाने की कोशिश करती हूँ इस सेगमेंट में और ये हटके कुछ ऐसा पॉपुलर है कि क्या ही कहा जाए. एंड दिस इज दैट टाइम ऑफ माई शो जब मैं आपके साथ वेदर अपडेट्स कुछ शेयर करती हूँ आपके लिए. और अभी जो हमारे लिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म एडवर्ड जो कि टेक्सस गल्फ को उसको अप्रोच कर रहा है, थर्सडे को वी विल सी ए लैंडफॉल एंड वील टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. तो ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म एडवर्ड है, ये जो अपना इम्पैक्ट लेकर आने वाला है, इसी के बारे में जो बातचीत है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द गल्फ कोस्ट, दैट इट इज़ गोइंग टू that it has hit in the morning today, and this system has developed a center of circulation and is showing signs of rapid intensification, meaning it may strengthen by at least 35 miles per hour in 24 hours. Ab landfall ki baat karun to aaj raat ko along the Texas Louisiana border ke hum ye landfall dekhne wale hain इस स्टॉर्म के, ट्रॉपिकल स्टॉर्म के. एंड आफ्टर एडवर्ड मूव्स इनलैंड, द सिस्टम विल क्विकली कोलैप्स एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ. दैट्स द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. और ये जो मॉइस्चर है, वो जो सिस्टम जो वो लेकर आएगा, ये थोड़े से हमारे टेम्परेचर्स चेंज करके जाएगा. एंड अ चांस ऑफ रेन दैट इट विल ब्रिंग टू नॉर्थ टेक्सस टुडे नाइट गोइंग इनटू tomorrow and day after and Friday morning as well. So storms will be isolated for the metroplex and more scattered for counties to the southeast of the metroplex, that I can tell you. Not everyone will see the rain. This is for you to know. तो बहुत जल्दी बहुत खुश नहीं होने की कोशिश करें आप. ये जो बारिश है, ये कुछ हम heavy downpour से लेकर कुछ you know, चुटपुट बारिश, वो सारा कुछ देखने वाले हैं. So no severe weather is expected. But hopefully DFW will see an end to the 47-day streak of dry conditions this week, ladies and gentlemen. Aaj ka high hamara kuch 100 ke aas paas hoga and the low will be in upper 70s. Tomorrow's high is going to be around 95 and low will be around 79. And we'll see the effect of Edward, the tropical storm Edward, on Thursday particularly when the temperature drops to 93 and our high low will be around 76. So that's your forecast for the coming days. As of now, let's bring you the next track right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. Ye hai Gupshup Gali with me too.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया।
1: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
10: Tracks that put you on the right track.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, शुभ मंगल सावधान, दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म. और आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की ये फिल्म काफ़ी अच्छी चली थी और आज ही के दिन रिलीज हुई थी और इसीलिए आप ये गाना सुन रहे हो फ्रॉम द फिल्म. और आयुष्मान खुराना के लिए डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट था, एज ही सेज इट वॉज हिज बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर. और ये रीज़न ये है कि एक जो टैबू सब्जेक्ट इसमें जो टैकल किया था यू नो स्टोरी राइटर ने और आयुष्मान खुराना ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका रिजल्ट ये हुआ था कि ही सॉर्ट ऑफ सीमेंटेड ए यूनिक नीश एज द पोस्टर बॉय फॉर सोशली रेलिवेंट टैबू ब्रेकिंग सिनेमा इन इंडिया. सो येस डेफिनेटली अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम. इसके पहले भी उनकी सक्सेसफुल फिल्म्स बनी थी लेकिन दिस डेफिनेटली ब्रॉट दैट एस्पेक्ट टू हिज करियर. कि जब हम अब आयुष्मान खुराना की फिल्म्स देखते हैं हमें पता है कि कुछ एक बड़ा ही रेलिवेंट सोशल सब्जेक्ट जो उन्होंने उठाया होगा अपनी फिल्म में. सो वंस अगैन दिस इज गपशप गली विथ मीठू और इस गपशप गली विथ मीठू में इस वक्त मैं आपके साथ ऐसी फिल्मों के गाने शेयर करती हूँ जो कि आज ही के दिन रिलीज हुई. तो लेट मी टेल यू, 1st of September 2017 वॉज द ईयर वेन दिस फिल्म शुभ मंगल सावधान रिलीज. वहाँ से एक सीधे ऐसी फिल्म पर जाने वाली हूँ जो मोस्ट लाइकली आप लोगों ने देखी नहीं होगी क्योंकि ये फिल्म डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे आई थी. इट रिलीज ऑन दिस डे सितंबर फर्स्ट इन द ईयर 2023. सो ये फिल्म वो थी जिसमें बाबिल खान, जी हाँ इरफान खान के बेटे, और वो एक इंटेंस डेब्यू के बाद सीधे इस फिल्म पे आए थे. एंड दैट इंटेंस डेब्यू वॉज कला विथ तृप्ति डिमरी, वी ऑल नो दैट फिल्म राइट. और उसके बाद फरहान अख्तर और रितेश सिद्वानी, इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है, इन्होंने ये एक सॉर्ट ऑफ क्या कहा जाए, एक ऐसी फिल्म बनाना चाहा था कि जो इंटेंशनली एक होमेज जो हो एक क्लासिक 2000s अमेरिकन हाई स्कूल पार्टी कॉमेडीज़ का, बट इट इट वॉज मेड श्योर कि ये एक मॉडर्न होलसम इंडियन सिबलिंग डायनामिक से जुड़ा हुआ हो एंड रिलेटेबल हो फॉर द इंडियन या हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, लेट्स से दैट. तो ये जो फिल्म थी इसमें बाबिल खान एंड अलॉन्ग विद दैट जूही चावला वॉज ऑल्सो इन दिस मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये फिल्म जो जैसे कि मैंने कहा कि आज ही के दिन आई थी और क्योंकि ये सीधे नेटफ्लिक्स पे आई थी सो इसका एग्जैक्टली पूरा हिसाब लगाना मुश्किल है कि हाउ डिड इट फेयर विद द ऑडियंस. आप बताओ, आपने देखी है ये फिल्म? फ्राइडे नाइट प्लान, दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म.

Friday Night Plan. That's the name of the film starring Babil Khan. I absolutely like him as a person. Actually, jitne bhi interviews dekhe, bahut genuine aur real lage hain Babil Khan. After all, Irfan Khan ke bete hain. We expect no less actually. और वो expectation बनाना ना बहुत गलत है, लेकिन सच्ची में अपने पापा के ही बेटे हैं वो, लगता है उनकी बातों से, उनकी उनकी उनकी जो जो उन्होंने जिस तरह से अपना चुनाव किया है इन टर्म्स ऑफ यू नो द सब्जेक्ट दैट ही चोज टू शो इन ऑन द स्क्रीन एज एन एक्टर, वो भी उनके कमाल का रहा है, यू नो स्टार्टिंग विद कला एज आई सेड. और ये फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान ये सितंबर 1, 2023 को रिलीज हुई थी, और इसीलिए आपने ये गाना सुना. आपको एक और गाना सुनवाने वाली हूँ, और गाना मेरे ख्याल से द बिगेस्ट पहचान ऑफ दिस फिल्म दैट इट वॉज. लेकिन उसके पहले आपकी पहचान करवा दें टेक्सास प्राइमरी केयर के साथ, और इसकी पहचान तो ये खुद ही है. For 13 years, they have proudly cared for our community. तो ये जो ब्रांड न्यू नेम और एक सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसे आप अच्छे तरह से याद रखो. हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ टू ऑल दोज न्यू लिसनर्स दैट वी हैव फाइनेंशियल रेडियो. ल्यूनॉक्सी मेडिकल. सो नाउ दिस इज फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, और इनके लिए इनके पास प्राइमरी केयर से लेकर अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और साथ में हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा. ये सातों दिन आपके लिए ओपन है, तो इट इज सो कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू टू विजिट देम 8 AM टू 8 PM ऑल 7 days अ वीक दैट दे आर ओपन फॉर यू. मेरे लिए जैसा होता है या मेरे जैसे आप में से कई लोगों के लिए होता है कि इट इज द बेस्ट आइडिया टू गो ड्यूरिंग द वीकेंड, राइट? एंड ये आपके लिए ओपन है 8 AM टू 8 PM ऑन द वीकेंड्स ऑल्सो. हाउ फैंटास्टिक इज दैट? वॉक इन एनी टाइम, अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है एट टेक्सास प्राइमरी केयर. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. अगली फिल्म पे जाऊं मैं, और इस अगली फिल्म के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मिलन लुथेरिया, इन्होंने अजय देवगन के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बाद ये वाली फिल्म जब की, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली वर स्काई हाई. तब ऐसे जो मैंने कहा ना कि एक्सपेक्टेशन जब बहुत बढ़ा लेते हो ना, तो आपके वो मतलब आप ज़्यादा जजमेंटल भी हो जाते हो मेरे ख्याल से तब. और इसीलिए मेरे ख्याल से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिली इस फिल्म को, जिसका नाम है बादशाह हो, जो आज ही के दिन 2017 में रिलीज़ हुई थी, स्टारिंग एज आई सेड अजय देवगन, एंड अलॉन्ग विथ हिम इट वॉज इमरान हाशमी एज वेल, एंड ऑफकोर्स Iliana D'Cruz also in this particular song that I'd like to play, क्योंकि फिल्म से कहीं ज़्यादा फिल्म का म्यूज़िक पॉपुलर हुआ था, particularly this next track, a film that you could call probably below average or you can say it flopped, but this song will stay with all of us forever.

0: बादशाह जो रिलीज हुई थी लेडीज एंड जेंटलमैन आज ही के दिन, एंड द ईयर वाज, लेट मी टेल यू दैट एज वेल, इट वाज 2017 जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इसीलिए इस फिल्म का सुपरहिट गाना ये जो मैंने लगाया, और यही कुछ ड्राइविंग फोर्स था फॉर द फिल्म टू बी वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस इनिशियली, बट देन इट फ्लॉप्ड। बादशाह ये फिल्म नहीं चली, लेकिन गाना हमेशा याद रखा जाएगा। वंस अगैन यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मीठू, और इस सेगमेंट में कुछ ऐसे फिल्मों के गाने सुनवाते हैं जो आज के दिन रिलीज हुए, यानी कि September 1st। यार इट्स ए ब्रांड न्यू मंथ, और इस ब्रांड न्यू मंथ की एक बहुत अच्छी शुरुआत एक और फिल्म से हुई थी, एंड द ईयर वॉज 2006। लेकिन वो गाना और वो फिल्म, उसके बारे में बातचीत होगी राइट आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक दैट वी आर ऑन टू।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
8: हाँ।
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ।
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
13: How may I help you?
14: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
13: Fikar not. We have the perfect solution.
15: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
8: Tracks that put you on the right track.

You are listening to Gupshup Gali with me too, and soon you will listen to Sonu Nigam's voice, and that voice coming to you straight to the place that you need to go, and that is Credit Union of Texas Event Center in Allen. Aur yahan ke liye Ticketmaster pe tickets zarur khareed lein. Sonu Nigam live in concert, ladies and gentlemen. I very specially wanted to play that song because I had heard in one of the interviews by the composers there कि भाई इन्होंने अपनी आवाज़ सैफ अली खान के तरह कुछ करने की कोशिश की थी इसमें, एंड इट इज़ सो ट्रू. इट फील्स एज दो सैफ अली खान इज सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर द मूवी परिणीता, एंड अलॉन्ग विथ हिम इट वॉज श्रेया घोषाल. और इसी कॉम्बिनेशन के साथ एक और बेहद खूबसूरत गाना मैं लेकर आने वाली हूँ. वंस अगेन ticketmaster.com पे जाके अपने टिकट्स ज़रूर खरीद लीजिए. इट इज़ ऑन सैटरडे सितंबर 26th एट 8:30 PM. सो इट इज़ ऑन द 26th सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और आप लोगों को फटाफट जाके अपने आप टिकट्स खरीदने हैं. इससे ज़्यादा देर नहीं अच्छा है क्योंकि आपको सीट्स अच्छे नहीं मिलेंगे फॉर द सेम प्राइस. Right, so go and buy your tickets right away for Revolution Sonu Nigam live. Ek aur bahut hi hamara pasandida gana from a very pasandida film of ours, and guess what, today it completes 20 years. September 1st 2006 ko release hui thi ye film aur pure 20 saal complete hue hain. Complete ek entertainment package tha jise kaha ja sakta hai. Aur ye jo film ke director hain Rajkumar Hirani, inhone is film ke liye likha कि 20 years of a film that taught us प्यार से, बात से और थोड़ी सी गांधीगिरी से सब मुमकिन है. एंड यू आई एम श्योर हैव गेस्ड द नेम ऑफ द फिल्म. यस,

इन्होंने इस फिल्म के लिए लिखा कि 20 years ऑफ अ फिल्म दैट टॉट अस प्यार से, बात से और थोड़ी सी गांधीगिरी से सब मुमकिन है. एंड यू आई एम श्योर हैव गेस्ड द नेम ऑफ द फिल्म. यस, इट इज लगे रहो मुन्ना भाई, विच डिड टेरिफिक एट द बॉक्स ऑफिस एंड सो डिड दिस सॉन्ग.

0: क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर, बस इसी की तैयारी हमारे दिल से आप लोगों के लिए, और इसीलिए एक और गाना जो मैं प्ले करना चाहती हूँ. बट प्रायर टू दैट आई डू वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों की तैयारी आपके घर में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो वेडिंग हो, ग्रेजुएशन हो, हाउस वार्मिंग हो या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन, इसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेन्यूज हो या डेकोर या केटरिंग, वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है ना, सारा कुछ वेनेसा इवेंट्स आपके लिए कवर कर सकते हैं. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटीफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रेनाउंड बसेरा ग्रैंड दैट यू मस्ट रिमेंबर. सो यू कैन फोकस ऑन एवरीथिंग अबाउट द इवेंट इटसेल्फ, यानी कि अपने मेमोरीज आप बनाओ अपने लोगों के साथ, वो सारी चीज़ों पर आप ध्यान दे सको, और ये बाकी के जो काम है यू कैन लीव इट ऑन वेनेसा इवेंट्स. बाय द वे फॉर केटरिंग यू कैन कॉल हरी बसेरा टुडे इटसेल्फ एट 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर फॉर एवर.
1: बिन पूछे मेरा नाम और
0: ऑल राइट, आई नीड टू मेक अ लिटिल करेक्शन हियर. शान की आवाज अलोंग विद श्रेया दैट यू

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. और अभी ना उस गली जाना चाहती हूँ जिस गली मुझे हमारे लिसनर्स ने कुछ कॉल करके कहा. एंड इट इज़ अबाउट द नेपाल डेवस्टेशन दैट हैज़ हैपेंड. एंड बिलीव इट और नॉट, हम यहाँ पे लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सबके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं. हम जितने भी सारे वीडियोज़ हमारे सामने जो आ रहे हैं, दे आर हार्ट ब्रेकिंग सीरियसली. और इट हैज़ हिट होम एज वेल. डैलिस के भी हमारे फ्रेंड्स जो मिसिंग हैं, उनके लिए हम दिली तौर से प्रे करना चाहते हैं. एंड दिस न्यूज़ एंड दिस द डेवस्टेटिंग विजुअल्स ऑफ द फ्लड्स इन नेपाल हैव कम्प्लीटली लेफ्ट अस हार्ट ब्रोकन. इसमें कोई शक नहीं है. और जितना भी कह लूँ, कितनी भी मैं बातें कह लूँ ना, आई विल डेफिनेटली फॉल टेरिबली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. लेकिन कलेक्टिव एक प्रेयर जो दिल से आप सबके प्रेयर्स को एक साथ लेते हुए मैं उन सब मिसिंग लोगों के लिए ये जो प्ले करना चाहती हूँ, मे द ऑल माइटी बी विद देम एंड द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, पीपल हु आर लुकिंग फॉर देयर लव्ड वंस, जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं उस फ्लड में, उन सब के लिए हमारे दिल से ये निकला एक प्रेयर, एक दुआ.

Our prayers going out to everybody affected by the Nepal devastation. और कितनी ही families इंतजार में हैं कुछ news पाने के लिए from the officials there. कितने लोग missing हैं अभी भी. And as I was talking before, it has hit home Dallas के भी हमारे दो couples जिनके बारे में मैं जानती हूँ. एक जो कि जिनके बारे में पहले पता चला था, and that is the Ahuja couple that we know about. और उनको ढूंढा जा रहा है. देयर डॉटर इज फ्रैंटिकली यू नो लुकिंग फॉर देयर पेरेंट्स दीपक एंड मधु आहूजा. और उनके साथ साथ हमारे एक फ्रेंड्स जिनका नाम है अर्चना और रघु राजन.

0: दिल से बहुत सारे प्रेयर्स, हमें पता है कि हम अपने पूरे दिन के काम लगातार, जैसे रूटीन में होता ना, हम कर रहे हैं, चल रहा है वो काम, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कॉन्स्टेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर लुकिंग इन टू द वीडियोज, द न्यूज़ दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ नेपाल, एंड वी आर जस्ट सेंडिंग अ हार्ट फेल्ट प्रेयर्स टू ईच एंड एवरी पर्सन अफेक्टेड. भगवान करे, हम दुआ करते हैं दिल से कि जो मिसिंग है उनमें से लोग मिलना शुरू हो. अभी तक 80 पीपल स्टिल मिसिंग फ्रॉम US एंड सो मेनी अदर्स. वाई जस्ट द पीपल फ्रॉम US शुड आई टॉक? देर आर सो मेनी अदर्स मिसिंग. एंड या लेट्स बी टुगेदर ऑन दिस एंड सेंड आर प्रेयर्स टू नेपाल एंड द डेवस्टेटेड पीपल देयर.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Ek aur laddu le lo.
4: Thodi aur biryani.
3: Are America jaake thodi milega.
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए.
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रोस्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन Health Primary Care.
7: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
8: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
13: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में सब संभाल लेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Dad, property papers कहाँ हैं?
15: Laptop में.
14: Investment?
15: Google Drive.
14: Insurance? Passwords?
15: बेटा, don't worry, मुझे सब पता है.
14: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
7: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
7: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
16: Tracks that put you on the right track.

ओ सनम ओ जिगर, तुमको हो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं, कहते हैं सब मगर को

यू आर लिस्निंग टू गपशप गली विथ मी टू. घड़ी मिला लीजिए, इट इज 38 मिनट्स पास्ट 11 बाय द स्टूडियो क्लॉक. और जिंदगी अनप्लग सेगमेंट में कुछ हम जो टॉपिक्स लेकर आते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स. वही सोच रही थी कि इसके पहले हमारी ना जिंदगी काफ़ी आसान होती थी. आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड आर लाइफ, लेकिन क्या है ना कि एक क्या कहना चाहिए, आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात के सोने तक सिर्फ स्क्रीन्स और सेंसर्स पर हम जी रहे हैं. ऐसा है कि नहीं बताइए. फ्रॉम स्मार्ट ग्लासेस कैप्चरिंग आर पॉइंट ऑफ व्यू, इनफैक्ट चैट जीपीटी कैप्चरिंग आर लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू, टू एआई टूल्स ऑर्गेनाइजिंग आर डेली स्केड्यूल्स, टेक्नोलॉजी सराउंड्स अस कम्प्लीटली होली, है ना. हमारी स्मार्ट वॉच हर सेकेंड बता रही है कि हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं, हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल क्या है, हमारी हार्ट बीट्स तक का ये पूरा हिसाब देती है. इट फील्स लाइक वी हैव टर्न्ड आर एंटायर डेली एग्जिस्टेंस इनटू दिस जायंट नॉन स्टॉप डिजिटल डैशबोर्ड. पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स पता है आपको क्या है, कि हमने ना ये इतना सब ऑटोमेट किया कि हमें थोड़े से जो हमारे रेगुलेटेड लाइफ चले, हम मेंटली एग्जॉस्टेड फील ना करें, लेकिन इन सब के कारण एक्चुअली वो एग्जॉस्टन हमारी थोड़ी बढ़ गई है लाइफ में. लाइफ वॉज बेटर आई फील प्रायर टू ऑल दीज वायरिंग दैट वी हैव ऑन अ डेली बेसिस. डोंट यू थिंक सो रियली? एक नए गाने पर लेकर जाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, एंड दिस सॉन्ग जस्ट रिलीज्ड यस्टरडे. इट्स एन अमित त्रिवेदी क्रिएशन, और वो कुछ ऐसे गाने अपने 15-15 दिनों में इन 2 weeks टाइम ही इज रिलीजिंग, दिस बीइंग द सेकंड सॉन्ग दैट ही हैज रिलीज्ड, जो कि उन्होंने बनाए लेकिन किसी वजह से फिल्म में इंक्लूड नहीं किए गए. सो इट स्टेज इन इज म्यूजिक बैंक, और वो अब एक एक करके रिलीज हो रहे हैं.

Amit Trivedi's second release of his series of songs that he is going to release in 2 weeks' time. Every 2 weeks, a new song will be dropped, composed by Amit Trivedi. वो ऐसे गाने जो उन्होंने release नहीं किए किसी वजह से, जो फिल्म में include नहीं हुए लेकिन उन्होंने पूरे दिल से बनाए, ऐसे कुछ गाने unreleased songs are being released for this very particular album, जिसका पहला गाना था चिनारों से, that I'll take you to. लेकिन वो लेकर चलूँ वाकई में चिनारों तक पहुँचने की कोशिश करें with the music that I'm playing for you. There is so much going on in our minds right now to do with Nepal flood. Really इतना devastation है कि हमारी feeds में, social media पे, सब जगह हम ये news देख रहे हैं, and our hearts are feeling really heavy. I mean घर पे भी मैं ये कह सकती हूँ कि हम, मेरे लिए भी है कि हम family में भी, you know, we are doing our everyday thing, the mundane routine, all of that is going on, जो needful है वो कर रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन बार बार हमारी बातें ना घूम फिर के वही उसी पे आ रही हैं कि you know ये क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज़ द न्यू न्यूज़ फ्रॉम देयर, और हमारे फ्रेंड्स की खबर, और इन सब चीज़ों के बारे में बस दिमाग वहीं घूम रहा है ऑनेस्टली. सो यहाँ पे हमारी कोशिश, फनीशा की ये कोशिश आप लोगों के लिए, कि वी आर ट्राइंग टू कीप अस ऑल यू नो वेल इन्फॉर्म्ड, एट द सेम टाइम वी वॉन्ट टू टेक योर माइंड्स ऑफ दैट, क्योंकि सच में एक मेंटल एग्जॉस्टन जो मैं फील कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों के साथ कैसा है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ये फील कर रही हूँ. फीलिंग रियली आई वॉन्ट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, एट द सेम टाइम आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी बर्डन बाई इट. देयरफॉर हम यहाँ पर फनीशा पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे गाने लगाएं. वी टेक यू अवे from the melancholy that is surrounding us right now. Our prayers going out to all the victims and the missing people, their families, everybody.

वॉन्ट टू मेक श्योर कि इन खूबसूरत गानों के साथ उन खूबसूरत डिज़ाइंस इन ज्वेलरी भी आप याद रखें. PMJ ज्वेल्स ये फ्रिस्को में आ चुके हैं, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. आप चाहे तो गोल्ड या डायमंड या ब्राइडल कलेक्शन इनका जो चेकआउट कर सकते हैं इनके शोरूम में जाकर. एंड इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू रियली थैंक यू नो महेश बाबू एंड सितारा घट्टा मनेनी. PMJ is a name trusted by generations, which is for all of us here in Frisco now on Main Street. So, zarur jaiyega and discover jewelry that tells your story. It is PMJ Jewels, ladies and gentlemen.

कभी कभी ना टेक्नोलॉजी से परे जाना काफ़ी होता है टू गेट दैट पीस ऑफ माइंड बैक. यू नो, बहुत फनी सी बात है कि जब हम वीकेंड पर पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए एक नया मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, यू नो वी लिटरली स्टेयर एट अ ग्लेयरिंग स्मार्टफोन स्क्रीन जस्ट सो ए सूदिंग ऑटोमेटेड वॉइस कैन इंस्ट्रक्ट अस ऑन हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली. यू स्पेंड $40 ऑन मेडिटेशन सब्सक्रिप्शन, या आप एंशियस यू नो अपने आप को रिमाइंडर सेट करते हैं अपने लिए ताकि वो नोटिफिकेशंस कुछ मिस ना हो जाए. ये सारे जो है ना आपके सच में दिमाग में इतना अनरेस्ट एक पैदा करते हैं. विथ सो मच गोइंग अराउंड अस राइट नाउ, विथ सो मेनी पीपल मिसिंग इन द नेपाल फ्लड, आई एम गोइंग ओवर इट अगेन एंड अगेन. सीरियसली डिडन्ट वॉन्ट टू, मैंने सोचा था कि आई एल कीप इट लाइट फॉर ऑल ऑफ यू, बट दिस इज़ द रियलिटी. हमारे दिमाग में सच में घूम घूम फिर के वही बातें आ रही हैं for the friends that we have not been able to find, and that is the reason we are probably talking about this over and over. तो इसीलिए चाहती हूँ कि जब आप फनीशिया सुने, हम आपके आपके आपको अनप्लग करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम दैट नॉइज अराउंड यू. इतनी सारी बातें हो रही हैं, ऑल यू कैन डू राइट नाउ इज़ प्रे फॉर देम एंड ब्रिंग दैट पीस इन योर माइंड राइट नाउ.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
7: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: इस साल तो कमल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं.
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं.
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं.
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियरबाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
19: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
20: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
20: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
20: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
22: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
23: तुमसे मिलके दिल का है.
22: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
24: लौट के आया उड़ता पंछी,
0: नया हुआ आगाज बरस।

यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM। और अगर तलाश स्टूडियो के नंबर की है तो हम बता देते हैं, सेव इट ऑन योर फोन 9722355555। दैट्स द नंबर टू कॉल लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये वो नंबर है जिस पे आप अभी कॉल करें तो आपको बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ फूडिस्तान में, जो आपके लिए बहुत सारे यू नो फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपूरी स्टेशन, फ्रेश गन्ने का जूस, केटरिंग सर्विसेज, एवरीथिंग दैट दे हैव, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स इंडियन ग्रोसरीज एंड ऑल्सो एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस जिसका नाम है द वाइब। और द वाइब की तरफ से आपके लिए एक गिव अवे है, एक फ्री आइटम दैट यू कैन विन फ्रॉम देयर। अगर आप मुझे बताते हैं कि द वाइब रेस्टोरेंट का एड्रेस क्या है, इट इज़ इन ऑबरी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पूरिस्तान के अंदर, और आपको एड्रेस ढूंढ के निकालना है। और अगर आप मुझे एड्रेस बता देते हैं तो द वाइब रेस्टोरेंट की तरफ से फ्री आइटम आपके नाम कर दिया जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल द कॉलर्स यू नो एंड राइट डाउन देयर नेम्स एंड पिक वन ऑफ द विनर्स फ्रॉम दैट। सो Give me a call 972-235-5555। फूडिस्तान आपके लिए ना सारा कुछ देसी एट वन प्लेस लेकर आती है और प्राइस मैच गारंटी करती है, लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी दैट दे ब्रिंग फॉर देयर ग्रोसरीज, प्लस आपके लिए फ्री डिलीवरी है टू ऑर्डर्स दैट आर ओवर $30 विद इन 5 miles यू नो रेंज दैट दे विल डिलीवर फॉर फ्री एब्सोल्यूटली। और अगर आप फर्नीचर का जिक्र करते हैं, फर्नीचर का नाम बताते हैं तो आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट मिलता है। और फिलहाल ये मौका कि अगर आप द वाइब रेस्टोरेंट जो कि फूडिस्तान के अंदर है इन ऑबरी, अगर उसका प्रिसाइस मुझे एड्रेस बता देना तो आपको इनाम जीतने को मिलेगा, विच इज़ अ फ्री आइटम फ्रॉम दिस अपस्केल रेस्टोरेंट। इंडियन खाना, हमारा वेरी इंडियन खाना विद अ मॉडर्न ट्विस्ट एंड द एम्बियंस दैट यू आर गोइंग टू एब्सोल्यूटली फॉल इन लव विद। So let's start

जीतने को मिलेगा, विच इज अ फ्री आइटम फ्रॉम दिस अप स्केल रेस्टोरेंट. इंडियन खाना, हमारा वेरी इंडियन खाना विद अ मॉडर्न ट्विस्ट एंड द एम्बियंस दैट यू आर गोइंग टू एब्सोल्यूटली फॉल इन लव विद. सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द कॉल्स ऑफ एयर व्हाइल आई प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक ऑन एयर राइट नाउ.

दिस लास्ट सेगमेंट इज डेडिकेटेड सेगमेंट फॉर एवरीथिंग दैट इज न्यू. अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने ये खबर शेयर की एंड ही रोट एंड आई एम गोइंग टू रीड इट वर्बेटिम. ही सेड आई रोट दीज वर्ड्स ऑन July 21st, टू डेज आफ्टर द फाइनल. टुडे आफ्टर वॉट हैपन्ड विद माई डैड आई एम इवन मोर कन्विंस्ड ऑफ द डिसीजन दैन बिफोर. आफ्टर ऑल दिस टाइम सिंस द फाइनल एंड आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम द नेशनल टीम. इट वॉज ए डिसीजन दैट हर्ट एंड स्टिल हर्ट्स डीप इन साइड बट I understand that this is the right moment. I swear I always give everything, not only in these last few years when we won everything, but before that too. I always fought and gave everything for this shirt to bring you happiness and make you feel proud to be Argentine through football. And there isn't much time left, and different chapters are coming to an end. This is one that hurts me a lot. I loved and I will always love being part of the national team. I gave everything I had and I don't have anything more to give. और ये उनका जो सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा, दैट एक्चुअली ब्रॉट टीयर्स टू मैनी ऑफ हिज फैंस. एक्चुअली पीपल आर जस्ट कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हिम नाउ, ऑल फुटबॉल फैंस. एंड येस, मेसी बाउज आउट एज अर्जेंटीनाज ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर विथ 125 गोल्स अक्रॉस 207 अपियरेंसेज, फर्मली प्लेसिंग हिम इन द पैंथियन ऑफ फुटबॉल रॉयल्टी अलॉन्ग साइड मैराडोना एंड पेले फॉर श्योर. और इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के अलावा ये जो इनके मेजर लीग सॉकर इंटर मायामी के क्लब के लेवल पर वो खेलना रेगुलर उनका कंटिन्यू करने वाले हैं. सो दैट इज़ सम गुड न्यूज़ फॉर द फैंस दैट दे विल स्टिल सी यू नो मेसी प्लेइंग इन फ्लोरिडा एंड अराउंड द कंट्री. So yes, ladies and gentlemen, that news in this taza and new segment. This is called the Fresh Drop segment, ladies and gentlemen. और ताज़ा खबर ये है कि सफ़ी के घर में उनके एक गेस्ट आए हुए हैं, ज़ैनब. और ज़ैनब के लिए वेरी स्पेशली दैट सफ़ी वॉन्टेड टू डेडिकेट दिस पर्टिकुलर गाना.

You are listening to Gupshup Gali with me too. This is a segment Taza and New, the fresh drop, जहाँ पे ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं. अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने एक लंबे और शानदार जर्नी के बाद ऑफिशियली ही हैज अनाउंस दैट ही इज रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल. द 39 ईयर ओल्ड लेजेंड कंक्लूडेड एन अनफॉरगेटेबल 21 ईयर करियर विथ हिज नेशनल टीम, हाईलाइटेड बाय लिफ्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2022. और इस साल रनर्स अप रही अर्जेंटीना की टीम. और वो जो इस सिलसिला मेरा शुरू हुआ है ताज़ा खबरें शेयर करने का, बस समझ लें कि फीफा से ही शुरू हुआ है. एंड

घड़ी मिला लीजिए, इट इज वेरी क्लोज टू, वी आर जस्ट 10 सेकेंड्स अवे नाउ, 9 सेकेंड्स अवे फ्रॉम 22 मिनट्स पास्ट 12। और आज की तारीख है सितंबर 1, और आज के दिन इस वक्त अगर हम खाने पीने की बात अगर कंटिन्यू ना रखें तो यार बहुत गलत बात होगी, क्योंकि आई नो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी देसीज आर हंटिंग फॉर फूड इफ़ यू हैवन गॉटन फूड एट वर्क। और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या मज़ेदार लज़ेदार खाएं कि ये 1 सितंबर को और बेहतरीन बनाएं। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि अगर आप कबाब्स या चाट या वो फ्यूजन बाइट्स में इंटरेस्टेड हो ना, या वो रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, तो हम एक जगह सजेस्ट करना चाहते हैं, और इस जगह का नाम है Page 3 Eatery, विच इज़ एट Hub 121। और अगर आपने अभी तक हमारी इतनी बार बताने के बावजूद भी अगर ट्राई नहीं किया है तो बहुत गलत किया है अपने साथ। तो अब चले जाएं अपनी गलती सुधारने के लिए, और ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट, फूडी मीटअप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गो देयर एंड एन्जॉय देयर फूड। इट ब्रिंग्स दैट गुड ओल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड विथ मॉडर्न फ्लेयर दैट यू आर गोना गेट देयर। बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, बड़े प्यार से सर्व करते हैं, और आपके लिए एक वो एनर्जी लेकर आते हैं अलॉन्ग विथ द वाइब्रेंट वाइब्स एंड ऑफकोर्स द मिक्स ऑफ फ्लेवर्स दैट दे ब्रिंग फॉर यू, जस्ट लाइक अस, ए मिक्स ऑफ म्यूजिक दैट वी ब्रिंग for you right here on Funisha Radio 104.9 FM.

एक कहानी खत्म हुई तो दूजी शुरू हुई, यही तो ये गाने में था ना। बस ऐसे ही कुछ टेक जायंट एप्पल में भी चल रहा है। आज एक नए दौर की शुरुआत हुई है विद जॉन टर्नर ऑफिशियली यू नो बिकमिंग द सीईओ ऑफ द कंपनी, सक्सीडिंग टिम कुक आफ्टर एन इनक्रेडिबल 15-year tenure. द 51-year-old टेक्स चार्ज ऑफ अ मैसिव $4.6 trillion एम्पायर वाइल कुक ट्रांजिशंस टू द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. द 51-year-old ज्वाइंड एप्पल इन 2001 एंड मोस्ट रिसेंटली लेड हार्डवेयर इंजीनियरिंग overseeing products including the iPhone, iPad, Mac and AirPods as well. Obsessive जाने जाते हैं अपने काम के डिटेलिंग में। एक बार सुना जाता है कि भाई एक बार उन्होंने घंटों स्पेंड किए थे काउंटिंग स्क्रू हेड ग्रूव्स टू मैच एग्जैक्ट डिजाइन स्टैंडर्ड्स। ही नाउ इनहेरिट्स द मिशन टू एक्सपैंड एप्पल्स AI कैपेबिलिटीज एंड क्रिएट ब्रांड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज। और इनका पहला सबसे बड़ा टेस्ट अगले हफ्ते होने वाला है, दैट कीनोट इवेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन अनवेल करने वाला है। इट इज ऑन September 9th बाय द वे दैट एप्पल इवेंट विच इज कमिंग अप इन कुपर्टिनो। स्टेपिंग इनटू द मैसिव लेगेसी ऑफ कुक, ही ड्रोव रेवेन्यूज पास्ट $400 billion एंड शिप्ड ओवर 3.1 billion आईफोन्स एंड टर्नर्स इज नाउ सेट टू डिफाइन द नेक्स्ट चैप्टर of consumer technology. And that's, ladies and gentlemen, pretty much in this segment. Let's finish it up with this next track right here.

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो।
6: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
6: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
6: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
6: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

हेलो एंड वेलकम टू फन एशिया. दिस इज योर होस्ट आयुषी और आप सुन रहे हैं आज मुझे फन एशिया के स्टूडियो से. कुछ अच्छे और खूबसूरत गानों का सिलसिला यहां पर चलता रहेगा आपकी होस्ट आयुषी के साथ.

So here was this beautiful song from the movie. बताइए नाम आपको पता है? मैं ही बता देती हूँ, लुटेरा. रणवीर सिंह एंड सोनाक्षी सिन्हा है इस फिल्म में, और ऐसे ही कुछ खूबसूरत गानों का सिलसिला चलता रहेगा. फानेशा 104.9 FM पे आपकी होस्ट आयुषी यहाँ पर आ गई है. और देखिए वक्त हो रहा है लंच का, तो मैं तो यहाँ माइक छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, पर आप जा सकते हैं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. जी हाँ, दिस रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन गार्लैंड एंड दिस इज द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स, सर्विंग अप तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच, फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज एंड फ्रेश हॉट नान. एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन. स्टेप इन टूडे एंड लेट तंदूरी फ्लेम्स सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड. सुन के लग गई है भूख, पर हम तो जा नहीं सकते, आप ही चले जाइए.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो. फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
9: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: हेलो, मेरे रिलेटिव आ रहे हैं. Everyone's asking, लंच में क्या है?
15: Fikar not. We have the perfect solution.
16: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
17: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
18: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. आज फन एशिया के स्टूडियो से दोपहर के 1:03 बज रहे हैं और 3-4 गाने भी लाइनअप करके रखे हैं मैंने. बड़ा ही बेकार पीजे था. ऐसे ही बहुत बेकार बेकार पीजे आजकल सुन रहे हो. मेरी एक मित्रानी है, बहुत अजीब अजीब मित्रानी मतलब मेरी फ्रेंड है, वो ऐसे ही कुछ ऐसे ना अजीब गरीब पीजेज मारते रहती हैं. तो बीच बीच में हम भी मार देंगे. सीख रहे हैं उससे हम कि कैसे मारना है गंदा गंदा पीजे. तो आपके साथ भी कोई ऐसा है, आपका दोस्त जो ऐसे ही पीजे मारते रहते हैं और यू नो आप हंसने के पहले सोचते हो कि इसने बोला क्या, हंसना किस बात पे है, तो ज़रूर बताइए हमको. फिलहाल हम आपको अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं फन एशिया 104.9 FM पर और आपकी होस्ट आयुषी है आज यहाँ पर. याद रखिए ये नाम, जी हाँ आयुषी. लेकिन फिलहाल गाना आयुषी का नहीं है, राधा का है.

So here was this beautiful song from the movie Student of the Year. और हमको लगता है ना कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो ठीक है, हमको मॉम ऑफ द ईयर का खिताब मिल जाना चाहिए. बिकॉज जितने टैंट्रम्स मेरी टॉडलर दिखा रही है, उसने मेरे सारे टैंट्रम्स को साइड रख दिया है. सो बेसिकली आई वॉज ऑन अ ट्रिप टू इंडिया अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, एंड वेन माई पेरेंट्स सॉ मी दिस काम विच आई नेवर डू, देन यू नो उनको ऐसा लगा कि क्या हो गया मेरी बेटी को. बोले कि मेरा जितना टैंट्रम था वो इस लड़की के अंदर जा चुका है और बचा है नहीं कुछ टैंट्रम दिखाने के लिए मेरे पास. सो अगर आपके पास भी टॉटलर्स हैं जिन्होंने आपके टैंट्रम्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ना, और आपके सारे नखरे अब आप नखरे करने के बजाय नखरे उठा रहे हो, देन यू आर गोइंग टू शेयर दैट स्टोरी विथ मी टुडे. सो यू कैन कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर जो कि है 972-235-5555, क्योंकि मैं बहुत सारी कहानियां ऐसी बताने वाली हूँ आज, और देखती हूँ कि आप मुझे ऐसे टॉडलर टैंट्रम्स के कौन सी कहानियां बताते हैं.

तो अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं, एंड इफ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम specialize exclusively in immigration law, including EB-5 investor visas, family and employment visas, perm labor certificate, and U.S. citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, email info@seemamehtalawfirm.com. I repeat, that's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of a Seema Mehta. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. बात करते हैं टॉडलर टैंट्रम की. तो भी मेरे पास एक फोन आया था, वहां पर जो हमारी कॉलर थी उनके और मेरे विचार बिल्कुल एक ही है कि ना घर में खाना मुश्किल हो गया. मैं मतलब अगर हमें कुछ ऐसा खाना है, मीठा खाना है, आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है, तो हम माओं को या फिर पेरेंट्स को छुपा के खाना पड़ रहा है. मतलब पहले बचपन में माँ बाप का डर था, अब इन तूफानी टॉडलर्स का डर है, जो ये हर जगह से, इनको ऐसे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होगा. दे आर सो बिजी इन वॉचिंग TV एंड दे आर डूइंग देयर कलरिंग या फिर ब्लॉग्स या कुछ भी कर रहे हैं. एंड देन सडनली जैसे ही वो एक, जैसे आप एड्स नहीं देखते हो कि आपका फ्रिज खुला स्लो मोशन में और उसमें से आपने एक आइसक्रीम निकाली, वैसे ही वो बच्चा आपकी तरफ मुंडी घुमाएगा, मामा मुझे भी चाहिए, मामा आई वॉन्ट इट. तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टॉडलर मॉम्स की, कि आजकल खाना भी छुपा के खाना पड़ रहा है. लेकिन गाना हम छुपा के नहीं बजाएंगे, क्योंकि फरमाइश आई है भाई सोहेल की, फरमाइश है मरियम के लिए. सोहेल और मरियम हमेशा गाड़ी में साथ होते हैं, और आज जब मरियम घर पे है और सोहेल गाड़ी में है, तो उन्होंने बोला कि

No health insurance or is Passion Health out of your network? Stay connected to affordable primary care with Passion Health Direct for just $85 a month. जी हाँ, सिर्फ $85 में. Your membership includes primary care visits, follow-up, preventive care, chronic disease and medication management. Telehealth when appropriate, care coordination plus 20% saving on eligible self-pay labs. And diagnostic services. You can call or text on 214-666-6259. I repeat, it's 214-666-6259. Or visit PassionHealthPhysicians.com. Passion Health, our passion, your health, our community. This program is not a health insurance. Eligibility restrictions do apply. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. बहुत सारी फरमाइशें आ गई हैं, उनको लाइन अप करके रखा है और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं यार. बहुत सारे लोगों का अपने टॉडलर्स की कहानियों का बहुत बड़ा लिस्ट है, बिकॉज हर एक टॉडलर, हर एक छोटा बच्चा जो कि आपके जब वो 2.5 से 3 साल के बीच में है और जब उस दुनिया एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो वो हमारी दुनिया को उथल पुथल कर देता है. मतलब जो चीज़ें नॉर्मल थी वो कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है. बच्चे क्यों रोने लगते हैं, कब रोने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है. डीकोड करने का कोई तरीका नहीं होता है. तो फिर हमने एक रास्ता अपनाया डीकोड करने के लिए. हमने उस बच्चे को रोने दिया जब तक वो रो सके, और रो रो के खुद ही ना चुप हो जाए. देखिए, सुनने में बड़ा हार्टलेस लगता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, लेकिन यही सच है कि करना पड़ता है. कुछ और नहीं कर सकते हैं हम बच्चों को चुप कराने के लिए. बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है ये, स्पेशली माओं के लिए. तो मुझे पता है ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लोगों ने अभी मुझे सुनाई हैं. मॉम्स आर जो भी मॉम्स गाड़ियों में हैं, उनके कॉल आए थे एंड दे सेड कि भाई देखो ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ये हो रहा है, तो तुम भी यही करो. मैंने भी सलाह दी कि अगर बच्चा रो रहा है ना, आप रोने दो. इंडिया वाले मत जाओ कि दादी लेके तारे दिखा रही हैं और दादा लेकर के कुछ और दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये नहीं हो सकता है. हम लोग न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आ गए हैं, जहाँ पर अगर बच्चा रो रहा है छोड़ दो, थोड़ी देर बाद अपने चुप हो जाएगा, भूल जाएगा, कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा. तो हम निर्दयी माएँ नहीं हैं, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में अकेले अपने बच्चों को पालने वाली माएँ हैं. फिलहाल इस गाने की फरमाइश आई थी हमारे रेगुलर कॉलर सफ़ी की तरफ से. सो दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इज़ फॉर यू सफ़ी.

वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक नहीं ब्रेक, हम भी तो तला रहे हैं बच्चों जैसा. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड मुझसे ये गलती हो गई, ये गाने की फरमाइश बहुत पहले आई थी एंड आई डोंट नो हाउ आई मिस दैट. चीनू आई एम सो सॉरी बट दिस सॉन्ग इज फॉर यू एंड इसके बाद ब्रेक हो जाएगा एंड वील बी राइट बैक एंटरटेनिंग यू फॉर फ्यू मोर आवर्स.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
11: लिया.
10: कभी policy समझ भी आया?
11: नहीं आया.
10: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
1: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट lunch ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, hub 121 McKinney.
14: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
15: Tracks that put you on the right track.
16: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे, और आज मैं आपके साथ एक घंटे और हूँ. अभी फिलहाल इस पूरे हफ्ते मतलब थर्सडे तक आप मुझे सुन सकते हैं 12:30 से 2:30 बजे तक. अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप मुझे और सुनना और देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिहारी मॉम इन अमेरिका के नाम से. जी हाँ, आई एम अ बिहारी मॉम, अ टिपिकल ठेठ बिहारी जो कि अपने बच्चे को बिल्कुल बिहारी तरीके से बड़ा करने की कोशिश कर रही है. क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो जहाँ से हैं वहाँ की बातें ना सिखाएं अपने बच्चों को तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर हम ये सोचते हैं कि इतनी दूर रहने के बाद अगर हमारे बच्चों को अपने रूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा. फिलहाल हम टॉडलर टैंट्रम्स की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने के पहले. टॉडलर टैंट्रम्स की लिस्ट बहुत लंबी है. बच्चों की जिद हमें समझ में नहीं आती है, उनका रोना हमें समझ में नहीं आता है, पर यार इन सब के बीच में ना जिस दिन हमारा बच्चा कुछ नया सीख के आता है या कुछ अच्छा करता है, जैसे अभी मेरी बेटी ने कलरिंग बहुत अच्छे से सीखा है एंड शी इज मेकिंग फिगर, शी इज जस्ट 3, तो शी इज मेकिंग फिगर, शी इज ड्रॉइंग अ फ्लावर इन अ पॉट एंड शी इज मेकिंग फेस विद आईज नोज एंड ईयर्स एंड वो सब बना करके वो मम्मा, वो फ्लावर भी मम्मा के लिए बनता है और वो जो फिगर होता है वो जिसमें बाल ऐसे खड़े हैं और वो भी मम्मा ही होती है. सो वो छोटी छोटी चीज़ें देख के बहुत खुशी भी होती है कि किस तरह से बच्चे ग्रो कर रहे हैं. बट द होल पॉइंट इज कि वेदर यू आर फ्रॉम बिहार और यू आर फ्रॉम दिल्ली और यू आर फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी जगह हो, राजस्थान हो, पूरे भारत के किसी भी कोने से आप इस देश में आए हैं, जस्ट डोंट ट्राई टू हाइड योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर चाइल्ड. घर पे उसी भाषा में बात करिए, ये मेरा मानना है. हो सकता है कुछ लोग मुझसे डिसअग्री करें इस पे, बट स्टिल आई एम गोना से दिस, आप जिस जगह से आए हैं, जो आपके रूट्स हैं, जो आपके कल्चर हैं, उसको अपने बच्चों तक ज़रूर लाने की कोशिश करिए, बिकॉज यही उम्र है जब उनमें वो छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो हमारी ठेठ बोली क्यों ना हो, चाहे वो हमारा खान पान क्यों ना हो, या हमारे पूजा पाठ, हमारे जो भी हम करते हैं घर में, वो सारी चीज़ें क्यों ना हो, दिस इज़ अ टाइम दे लर्न. बिकॉज एक बार मैंने सुना है अपने दोस्तों से, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उस फेज में आ जाते हैं जब वो यू नो 7-8-9 साल के हो जाएंगे, दे विल नॉट इवन ट्राई टू टॉक इन हिंदी. तो अभी एटलीस्ट सीख लेंगे तो अच्छा है. तो यही टाइम है इफ़ यू आर अ टॉडलर पेरेंट, तो जब आपका बच्चा बोलना सीख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी उसको अंग्रेजी के साथ हमारी अपनी भाषा भी सिखा दीजिए. फिलहाल आपको लेके चलते हैं अगले गाने की तरफ, जो कि राम ने जिसकी फरमाइश की है.

Attention, Texas business owners looking for a smarter commercial energy solution? Trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas business since 2002 with competitive rates, reliable service, and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. So, welcome back after this beautiful song. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को 104.9 FM पे. थोड़ा सा थॉट लॉस्ट हो गया था बिकॉज अभी मैंने किसी से बात की और मेरी कॉलर थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए मुझे. उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है अपने बच्चों को यहाँ के हिसाब से, मतलब इंडिया के हिसाब से या फिर अपने कल्चर के हिसाब से रखना. लेट द चाइल्ड बी देमसेल्व्स, एंड उनको अगर वो अमेरिका आए हैं तो उनको अमेरिकन वेज सीखने देना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो ट्रू एंड मैनी पीपल माइट थिंक द सेम. तो भाई ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और सबकी सोच बिल्कुल सही है बिकॉज अपने बच्चों के लिए जो भी करता है अच्छा ही करता है. सो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे. टॉडलर टैंट्रम्स की बात करते करते थक गए तो अब टॉडलर्स को आराम करने देते हैं. जी हाँ, उनका नैप टाइम है ना डे केयर में, तो हम भी टॉडलर्स को आराम से सोने देते हैं और उनके टैंट्रम्स के बारे में बात नहीं करते हैं. बट येस, थैंक यू फॉर ऑल द मॉम्स हु कॉल्ड. पापा लोगों ने फ़ोन नहीं करा, लगता है सारे टैंट्रम्स माएँ ही झेल रही हैं. एक और नया टॉपिक निकल के आ रहा है कि पापा आप लोग टैंट्रम झेल रहे हो या नहीं झेल रहे हो. मॉम्स, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू. आर द फादर्स झेलोइंग दिस टैंट्रम, या फिर हमें रील पे ही वो रील डैड्स दिखते हैं जो कि बच्चों के सारे काम कर रहे होते हैं और माएँ थोड़ा आराम कर रही होती हैं. इज इट जस्ट फॉर द रील और रियल लाइफ टू. टॉडलर्स को छोड़ो, माओ और पिताओं की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी कॉल अभी मेरे पास आए हैं लास्ट आई थिंक आधे घंटे के अंदर में, सब मम्मियाँ फोन करके मुझे बता रही हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, या तो पापा मुझसे बात करने में शर्मा रहे हैं या पापा कुछ करते ही नहीं हैं. बताइए क्या होता है आपके घर में. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. कुछ नहीं बताना है तो गाने फरमाइश कर लीजिए. मैं तो बस ऐसे ही बातें बना रही हूँ जो कि मेरा काम है.

डैलस वासियों तैयार हो जाइए फॉर अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, सैटरडे 26th September at 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite song and that iconic voice jisse hum sabko pyar hai. All live tickets available at Ticketmaster. For more information call 855-360-SHOWS. I repeat, it's 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam live, exclusive media partner Phanesia. तो भाई चलिए अगला गाना गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन उसके पहले बता दूं मेरे पास एक अभी कॉल आई और आई एम सॉरी मैं नाम नहीं पूछना भूल गई उनसे, बट उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यार से कि बेटा आप लोगों के पास तो इस ज़माने में इतने सारे ऑप्शंस हैं बच्चों को बिज़ी रखने के लिए, लेकिन हम जब जैसे आप फ़ोन पकड़ा देते हैं, आप टीवी लगा देते हैं, इतने सारे शोज़ हैं, लेकिन जब हम बच्चे पाल रहे थे ना तो हमारे पास ऐसे कोई भी ऑप्शंस नहीं थे. तो भले ही आप लोग न्यूक्लियर सेटअप में रह रहे हैं लेकिन फिर भी आप बड़े अच्छे से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उस चीज़ का शुक्र मनाइए. तो थैंक यू फॉर दिस कॉल मैम, आपने जो ये कॉल किया और बताया हमें, वो तो है हर स्टेज के और हर पीढ़ी के चैलेंज अलग होते हैं. मेरी माता जी भी मुझे यही बात करती हैं कि बाबू बहुत अच्छे से पाल रही हो बच्चा, ठीक है हम लोग के समय में रहती तो घर भी संभाल रही होती, जॉइंट फैमिली में भी रह रही होती और बच्चा भी देखना पड़ता अलग से. तो ऐसा कहती है हमारी मम्मी. फिलहाल ये गाना आप लोगों के लिए, और सोनू निगम के शो के टिकट नहीं लिए ना तो जल्दी से ले लो. नंबर फिर से बता रही हूँ, 855-360-SHOWS, 855-360-SHOWS. एंड ये रहा अगला गाना.

0: चलते चलते फिल्म का ये गाना था आप लोगों के लिए, और इस गाने को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने. ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड अ ब्यूटीफुल मूवी टू. इस फिल्म के बहुत सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं. एंड को मैं वो हमेशा कहती हूँ कि कोई ना कोई एक कॉलर हमारे होते हो जब हम यू नो रिसेंट टाइम्स के गाने बजा रहे होते हैं, एंड दे टेक अस बैक टू दिस 90s एंड अर्ली 2000 एरा. और ये उसी दौर की मूवी है. एंड मैंने इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो या आई थिंक सुनो फर्स्ट डे फर्स्ट संडे में भी देखा था पुणे में. और बहुत ही क्लियर यादें हैं मेरी इसको लेकर, या उस समय तक बड़े हो गए थे तो अच्छे से याद है. और काफ़ी अच्छी फिल्म है. और अब यार वो थिएटर का क्रेज़ चला गया. मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ क्योंकि आजकल ना वापस से बॉक्स ऑफिस का बहुत नाम सुन रही हूँ, बॉक्स ऑफिस पे इतना कमाया उतना कमाया, बट वो 2000s वाले टाइम में ना एक अलग क्रेज़ था थिएटर का. एनी वेज, हेडिंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं और फिर हमारा गिव अवे टाइम होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
7: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
8: Tarikh par tarikh.
9: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
7: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
10: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian, ab jaye to jaye kahan?
9: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
11: Matlab crispy golden dosa?
9: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
11: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
10: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
20: आपके सुहाने सफर का साथी फन एशिया रेडियो।
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और बहुत सारी चर्चाएं हुई आज हमारे शो पे हमेशा की तरह, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर ये सेगमेंट मैं और करूंगी तो उसका नाम मैं रख दूंगी चर्चा। चाय पे चर्चा, फनेशिया पे चर्चा या चर्चा, बिकॉज आई लव व्हेन आई गेट दीज कॉल्स जहाँ पे चर्चा दोनों तरफ से डिस्कशन, जैसे मैं ढिशक्या हूँ, एक गोली चला रही हूँ, दूसरी गोली चल रही है और हमारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बट बहुत मज़ा आता है। तो अभी एक बहुत अच्छी कॉल आई, मतलब अच्छी कह रही हूँ मैं, कॉल आई और मुझे नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया, तो मैं नहीं लूँगी, बट उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो आई कम्प्लीटली अग्री, जो तुमने टॉपिक उठाया बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट एंड, बट आई कम्प्लीटली अग्री कि तुमको ये बताना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा रूट्स क्या है। अपने बच्चों को डेफिनेटली बताना चाहिए, इसलिए ना, ताकि उनको, तुम्हारे बच्चों को ये पता लगे कि तुम कहाँ से उठ के आए हो, क्या क्या छोड़ के आए हो, सिर्फ उनके लिए या एक अच्छी लाइफ के लिए जो कि हमें यहाँ अमेरिका में मिल रही है। बिकॉज हम जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, हम जितने भी लोग दूसरे देशों से उठ के आए हैं, चाहे कोई भी देश हो, वो यहाँ पर आए, वी हैव लेफ्ट लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड। कुछ लोग खुशी से छोड़ते हैं, कुछ लोग काम के लिए छोड़ते हैं, कुछ लोग दुख के साथ छोड़ते हैं, कुछ लोग हमेशा उन यादों से जुड़े रहते हैं, बट हम सब कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ पे कुछ नया बिल्ड करने के लिए। सो आर kids, our children should know the sacrifice that we have done to give them and ourselves a beautiful life. And I think that thought is beautiful. That yes, पता होना चाहिए, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम बहुत कष्ट करके हमने तुम्हें पाला है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, दे नो, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। सो आई कम्प्लीटली अग्री और मे बी सम वॉट अग्री विद दिस कि दे शुड नो वॉट देयर पेरेंट्स हैव डन, वॉट दे हैव लेफ्ट। हम बच्चे जो हैं यहाँ पर हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, और हर दिन लगता है कि यार दे आर गेटिंग ओल्ड एंड वी शुड बी अराउंड देम एंड वी आर देयर व्हेन दे नीड अस, बट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स ऑफ द डे। आई थिंक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमारे बच्चों को कि हमने भी कुछ छोड़ा है उनको और अपने आप को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, फॉर अ बेटर लाइफ हियर इन द US। सो या मूविंग अहेड, दिस इज आवर सेगमेंट वेयर वी गिव अवेज। जी हाँ, हमारे गिव अवे की बारी आ गई है, तो फोन से चिपके रहिए, मतलब नंबर डायल करिए, स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555 एंड the next giveaway, like the this giveaway is from Fun Pizza Kitchen and they have launched a brand new Mexican inspired pizza lineup, and these aren't just pizzas, they are a full on flavor fiesta, from the fresh fiesta veggie to fiery Pollo Loco and the seafood packed Senor Camarón. Every bite is bold, exciting and made to impress. Head over to Fun Pizza and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. And now, you have the chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a very simple question. ठीक है? तो मैं गाना play कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा सा गाना है. इसमें थोड़ा सा थिरकिए, dance करिए और साथ में मुझे बता दीजिए call करके कि कौन सी फिल्म का गाना है ये.

सो वी हैव आवर विनर फॉर द डे एंड सही जवाब दिया है कि इस फिल्म का नाम है, भूल गई मैं ही नाम कुछ ना कहो, क्या हो गया मुझे, समटाइम्स आई फ्रीज एंड दिस वाज वन ऑफ द टाइम्स, या कुछ ना कहो का गाना था और हमें विनर मिल गया भाई आज का, उनके लिए जोरदार तालियां, प्रियंका चिटनिस। So yes, Priyanka, congratulations. You get a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. आपको Frisco location पे जाना है and you can collect the gift card. Thank you for calling. And yes, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास, पर कुछ गानों की फरमाइश आके रखी हुई है. So I'll फटाफट play those songs and not do ज़्यादा बकबक because बात करने में ज़्यादा time नहीं लगाना चाहिए. So here's the next song requested by Priyanka. This is another Priyanka who called me. So listen to this beautiful song.

0: गानों की लाइन लगी हुई है और वक्त है कम मेरे पास। घड़ी में बज रहे हैं 2:17 और इसके बाद 2:30 बजे के बाद आपके साथ यहाँ पर होंगी सुनहरी किरण, जो कि बहुत ही प्यारा सा शो लेकर के आती हैं। सो फनीशा का नेटवर्क छोड़ के कहीं जाइएगा मत। तो फिलहाल अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं हम।
1: तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं,

डर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, शाहरुख खान और जूही चावला हैं इस फिल्म में, साथ में सनी देओल साहब भी थे। तो भाई वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट दो गाने तो और बजा ही पाऊंगी। आई एम सॉरी अगर आपकी फरमाइश आज नहीं आ पाई है, तो हम कल जरूर पूरा करेंगे उनको, लेकिन अगले गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चल रही हूँ।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: से।
1: बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
0: So here was this beautiful song from the movie Sarfarosh. और अब विदा लेने का वक्त आ रहा है, एंड आज के लिए टाटा बाय बाय। वी विल मीट टुमारो अगेन एट 12:30 PM और 12:30 to 2:30 बजे तक आपके होस्ट आपको यहाँ पर एंटरटेन करेगी। आप सुन रहे थे आयुषी को फनीशिया 104.9 FM पे, और अगर आप मुझे और सुनना और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन बिहारी मॉम इन अमेरिका, दैट्स माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, आयुषी भूषण के नाम से मेरा हैंडल है। तो बस वहाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। वैसे तो फनीशिया पे आप मुझे रोज सुन ही सकते हैं। आज का आखिरी गाना एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड रेस्ट ऑफ योर डे।

0: नजर लग जा।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इस powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
5: लैपटॉप में।
4: इन्वेस्टमेंट?
5: गूगल ड्राइव।
4: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
5: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
4: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
6: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
6: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
11: डील कहाँ?
10: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
6: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है। हैव यू थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू और अ बिजनेस पार्टनर पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. रहती हूं Monday through Friday, 2:30 बजे से 5 बजे तक मेरा और आपका ये साथ होता है. This musical journey that me and you share with lots of update, lots of information as well as some lots of beautiful music. ये तो है फाइनेंशिया का खासा. 24/7 हम रखते हैं आपको entertained as well as informed. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. अच्छा जी, आज है ट्यूसडे और आप जानते हैं जैसे सुनहरी किरण पे हमेशा आपके लिए एक नया फ्लेवर होता है. ट्यूसडेज का फ्लेवर होता है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डाली जाती है एक ऐसे स्टार पे जिन्होंने अपने काम से हमें किया बहुत ज्यादा महसूस, यानी कि एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, जो भी, एनीवन हु हैज गिवन अस सम ब्यूटीफुल म्यूजिक इन बॉलीवुड इज हु वी चेरिश एंड एंजॉय राइट हियर ऑन बॉलीवुड स्पॉटलाइट. और आज की स्पॉटलाइट जिस पावर पैक्ड वोकलिस्ट यानी कि सिंगर पे, फीमेल सिंगर पे मैंने डाली है, उनकी आवाज अपने आप में एक पहचान है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो जिनके ऊपर वाकई ये जुमला फिट करता है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे. बिल्कुल याद है जी, और उनको ही कर रहे हैं सेलिब्रेट. टुडे द स्पॉटलाइट इज ऑन सुनिधि चौहान.

सुनिधि चौहान पे डाली है आज हमने स्पॉटलाइट, बॉलीवुड स्पॉटलाइट में. शी इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज सिंगर्स जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ. आई थिंक द पावर पैक्ड आवाज जो उनकी है और हर तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, आज मैं आपको बहुत सारे फ्लेवर्स उनकी आवाज के सुनाऊंगी, उनके तरीकों के तौर तरीकों के सुनाऊंगी. वो किस किस्म के गाने गाती हैं और किस किस्म का उनका सिंगिंग का तौर तरीका है, इसके बारे में बात की जाएगी. 14th August 1983 है सुनिधि चौहान की बर्थडे. प्लेबैक सिंगर हैं एंड नोन फॉर ऑफकोर्स हर बोल्ड वोकल रेंज एंड वर्सिटैलिटी. और उसी के साथ आई लव लव लव टू वॉच हर परफॉर्म बिकॉज आई हैव यू नो बिन लकी टू बी ऑन अ कॉन्सर्ट जहां पे सुनिधि चौहान परफॉर्म कर रही थी. एंड आई थिंक शी इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट स्टेज परफॉर्मर्स दैट आई हैव सीन. रॉक करती हैं, गाना तो गाती ही हैं और साथ आपकी एनर्जी को इतना हाई रखती हैं कि एक सेकेंड के लिए भी एनर्जी ड्रॉप नहीं करने देती. दिस इज बॉलीवुड स्पॉटलाइट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जाना चाहते हैं फॉर द एक्सलेंट सर्विस दैट दे प्रोवाइड, या फिर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्थ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर उनके नेटवर्क में नहीं आता, तो पैशन हेल्थ आपके लिए इसका सोल्यूशन लेके आए हैं. स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट, विच इज फॉर जस्ट $85 अ मंथ. ये मेंबरशिप क्या क्या इंक्लूड करती है? दिस इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलोअप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसी के साथ टेली हेल्थ जब अप्रोप्रिएट हो, और केयर कोऑर्डिनेशन भी. और इन तमाम चीजों के साथ 20% आपको सेविंग्स प्रोवाइड करती है ऑन एलिजिबल सेल्फ पेड लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज वेल. सो नो मैटर इफ यू आर नॉट कवर्ड इन द नेटवर्क और यू डोंट हैव इंश्योरेंस, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का ये पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर्मूला विच इज $85 a month can cover all this for you. आपका कोई सवाल है आप उनसे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली एंड हैव देम आंसर योर क्वेश्चंस. 214-666-6259. एक बार नंबर फिर नोट कर लीजिए, 214-666-6259. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, passionhealthphysicians.com. Passion Health is extremely passionate about your health. They are serving the community and they want you to be careful about your health as well. Ek baar aapko batate chale, this program is not health insurance. Eligibility restrictions apply. With that, we are heading on to our next song. Sunidhi Chauhan pe aaj humne spotlight dali hai. Aapke liye shayad ek episode justify nahi kar paegi Sunidhi Chauhan ke khubsurat gaano ko. Koi baat nahi, hum iska part 2 le aayenge. Lekin filhal, let's enjoy this one.

और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, और आपको चाहिए एक ऐसा अटर्नी आपकी साइड पे जो आपके लिए इन तमाम चीजों को हैंडल करे, और वो अटर्नी है अटर्नी उमर ख्वाजा. बिकॉज ना सिर्फ पेपर वर्क इंश्योरेंस कंपनीज बल्कि लॉट्स ऑफ निटिग्रिटीज और लीगैलिटीज होती हैं जो हमें अक्सर पता ही नहीं होती कि कैसे डील करना है इनके साथ. सो अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और बेहतरीन बात यह है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल यू विन. सो दिस विन विन सिचुएशन इन दिस स्ट्रेसफुल टाइम इज वॉट यू नीड. अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल कीजिए फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 469-300-5046. 469-300-5046 इज द नंबर, और यू कैन विजिट द वेबसाइट विच इज अटर्नी उमर omar.com. दिस नंबर इज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल विल प्यार व्यार.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक रंगमंच है,
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: It's Hoko.
0: अरे बस भी करो यार।
6: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
0: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
11: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Chahe aap individual ho ya aapka koi startup ho ya phir you have an established business, AG Fintechs aapko help karta hai in finding innovative financial solutions that are perfect for your needs, from bookkeeping, payroll accounting to bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, मतलब हर चीज, और इसके साथ business advisory services भी आपको AG Fintechs provide करते हैं. They help you keep organized, your finances keep organized, compliant and future ready. तो आप उनको make them your partner in building a strong future. आज ही उन्हें call कीजिए, और कोई भी आपका ये बात सुन के सवाल आया है तो there is never a harm in calling and asking or discussing. That number is 469-942-9888. 469-942-9888 is the number. ये आप उनकी website भी visit कर सकते हैं, which is AG Fintechs, FINTAX, agfintechs.com. जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर welcome करती हूँ. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में Bollywood Spotlight. Tuesdays is dedicated to Bollywood Spotlight. जैसे Monday आपको dedicate होता है, वैसे Tuesdays हमारे stars को dedicate होता है. और आज की Spotlight डाली है सुनिधि चौहान पे. एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गाती नहीं है, बल्कि मुझे वाकई ऐसा लगता है कि वो अटैक करती हैं अपनी आवाज से. कभी रोमांस, कभी हार्ट ब्रेक, कभी डांस फ्लोर को इग्नाइट कर देती हैं, मतलब आग लगा देती हैं, तो कभी पेट्रियोटिक गाने गाकर एब्सोल्युटली इमोशनल कर देती हैं, कभी धीमी आवाज तो कभी इतनी पावरफुल कि उसकी पावर से आपका दिल लरजने लगे, कभी सूफी अंदाज तो कभी रॉक तो कभी फोक, और कभी वो हस्की, वो अनअपोलोजेटिक वॉइस कि आप कहते हो ओ माई गॉड, दिस इज सुनिधि चौहान. There's no way you can't pick कि ये आवाज सुनिधि चौहान की है. So आज ये पूरे जो हमारे 4:30 बजे तक, अराउंड 4:30 या 5 ही कह लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सुनिधि चौहान के गाए हुए कुछ खूबसूरत गाने.

सुनिधि चौहान का करियर बॉलीवुड की उन रेयर जर्नीज में से है जहां एक चाइल्ड सिंगर से लेकर वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वर्सटाइल प्लेबैक वॉइसेस बनने तक का सफर हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा. सो दिल्ली से निकली एक छोटी सी लड़की और फिर बन गई बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगिंग लैंडस्केप का सबसे बड़ा सितारा. सुनिधि ना सिर्फ एक जॉनर को रिप्रेजेंट करती हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं उनके मुख्तलिफ किस्म के गाने सुनती हूँ कि शी बिकेम द वॉइस ऑफ attitude and energy and sensuality and strength and vulnerability. और साथ ही साथ उनकी आवाज से वो celebration की feeling आती है. जिस तरह के उन्होंने गाने गाए हैं, ये तमाम एहसासात मुझे उनके गानों से मिलते हैं. जैसे कि जो अगला गाना मैं आपके लिए play करूंगी, that is such a beautiful number. वो आप सुनिए. This is taken from the movie Chameli, picturized on Kareena Kapoor.

सुनिधि की आवाज का जादू आज 5 बजे तक यहाँ आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आपके लिए चलता रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप क्रेव कर रहे हैं उस फ्लेवर को जिसके साथ आप बड़े हुए हैं इन इंडिया, सो ऑफ कोर्स होको इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स। और अब होको मिलेगा आपको फ्रिस्को टेक्सस में। एंजॉय आइकॉनिक फेवरेट्स जैसे कि चना पूरी, सैंडविचेस, डिलिशियस करीज और लेजेंडरी होको कोल्ड कोको, जिसके लिए वो कहते हैं ना पीपल स्वेयर बाय इट। सो आप विजिट कर सकते हैं होको को। दे आर नाउ ओपन एट 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1000 फ्रिस्को। या फिर आप उनका मेन्यू चेकआउट कीजिए बाय लॉगिंग ऑन टू देयर वेबसाइट। दैट एड्रेस इज hoco.us, दैट इज HOCCO hoco.us। तो उनका मोटिव बड़ा सिंपल है जी, आप हंगरी आइए और पेट भर के जाइए, उस टेस्ट के साथ पेट भरिए जो आपके बचपन की यादें कर दे ताजा।

फ्रॉम अ लिटिल गर्ल टू अ लिटिल वंडर. हर सुपरस्टार की स्टोरी में कोई ना कोई बिगनिंग तो जरूर होती है. सुनिधि की स्टोरी सरप्राइजिंगली बहुत अर्ली शुरू हुई. उनका बर्थ नेम रखा गया निधि चौहान और फिर वो शी वॉज बॉर्न इन दिल्ली, लेकिन सिंगिंग उनके लिए कोई टीनेज हॉबी नहीं थी. शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग व्हेन शी वॉज जस्ट 4 years old. अब आप इमेजिन कीजिए, जब दूसरे बच्चे टॉयज से खेल रहे थे, एक छोटी सी सुनिधि स्टेज पर कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही थी. दैट वॉज व्हेन द जर्नी ऑफ दिस मास्टर गर्ल स्टार्टेड.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
0: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
1: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
4: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

सुनिधि चौहान पे डाली है हमने आज की स्पॉटलाइट और कुछ उन्हीं के गाए हुए खूबसूरत गाने आपके लिए लाइन से प्ले कर रही हूँ जी, बैक टू बैक। सुनिधि चौहान की आवाज का धमाका आज यहाँ हो रहा है बॉलीवुड स्पॉटलाइट पे। 2:30 से 5 बजे तक ये सफर हमारा रहेगा जारी। दिस ब्यूटिफुल मैजिकल अमेजिंग वॉइस जो हमें मिली है, एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एडिशन जो फिल्म इंडस्ट्री में हुआ सुनिधि की आवाज के साथ। अच्छा जी, मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक गिव अवे, और गिव अवे सबसे पहले तो आपको बताऊं कि किसकी तरफ से आपके लिए आया है। फन पिज्जा किचन की तरफ से। जी हाँ, फन पिज्जा किचन ने अपना एक ब्रांड न्यू पिज्जा लाइनअप इंट्रोड्यूस किया है इंस्पायर्ड बाय द मेक्सिकन फ्लेवर्स। अब दीज आर जस्ट पिज्जाज, ये हैं जी आप कह लो एक फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा है आपके लिए जो अरेंज किया गया है। फ्रेश वेजीज, चिकन, साथ ही साथ सी फूड पैक्ड जबरदस्त पिज्जाज आपको मिलेंगे। एवरी बाइट इज बोल्ड, एक्साइटिंग, एंड इट इज ऑफकोर्स क्रिएटेड टू इम्प्रेस यू एंड टू मेक यू वॉन्ट टू लव इट एंड क्रेव इट एंड वॉन्ट टू कम बैक अगेन। सो फन पिज्जा किचन विजिट कीजिए, टेस्ट कीजिए उनका ये न्यू फ्लेवर फिएस्टा जो उन्होंने आपके लिए अरेंज किया है। दिस इज न्यू ऑब्सेशन फॉर यू, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। funpizzakitchen.com इज वेयर यू कैन लॉग ऑन एंड चेक आउट देयर मेन्यू एज वेल। और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। और आप ये गिफ्ट कार्ड जब जीत जाएंगे तो आपको फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को जाना पड़ेगा जी। फ्रिस्को की लोकेशन से जाके अपने इस $10 के गिफ्ट कार्ड को आपको कलेक्ट करना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की, सो गिव अवे भी बहुत इसी से रेलेवेंट मैं आपसे करूंगी। मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि वन अल्टीमेट सॉन्ग जो आपको सुनिधि का बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखिए, गाने मुझे पता है द चॉइसेस आर सो मेनी, और आप कहेंगे जी एक कैसे पिक किया जाए, तो वो तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है एक पिक करना। बट ऐसा सुनिधि का नाम सुनते ही आपके जहन में कौन सा गाना, मेरा सवाल सुनते ही आया, अगर आप वो बता देंगे तो दैट विल बी ग्रेट एज वेल। 9722355555 इज द नंबर टू दिस स्टूडियो। फोन उठाइए, कॉल मिलाइए और जीत लीजिए दिस $10 फन पिज्जा किचन गिफ्ट कार्ड।

Thank you so much for all your calls and for your participation. As always, Fun Pizza Kitchen की तरफ से ये $10 का gift card आपके लिए आया था, जो आपने मुझे बताना था कि कौन सा सुनिधि का गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है. आप सबकी फोन कॉल्स का शुक्रिया. और आज की जो हमारी लकी विनर है वो है नेहा दोषी. नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस अलॉन्ग विद अरुण एंड कमला एंड मेनी मोर जिन्होंने हमें कॉल किया. सुनिधि के इतने सारे गाने हैं कि एक से बढ़कर एक. सो जल्दी से हम एक और गाने के साथ आगे बढ़ते हैं. और नेहा, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर फन पिज्जा किचन पहुंचाने के लिए एट फ्रिस्को लोकेशन. एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days एक्चुअली टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड पिक अप योर $10 गिफ्ट कार्ड एंड एंजॉय इट. दिस इज फन पिज्जा किचन फॉर यू.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
7: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
8: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
9: हाँ.
8: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ.
8: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ.
8: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
11: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
12: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
13: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
14: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
15: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
14: Floors clean.
17: Check.
14: Windows clean.
17: Check.
14: Kitchen clean.
17: Check.
14: Air ducts clean.
17: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
15: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where duct time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
18: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
19: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
18: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम.
20: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

चार साल की उम्र से सुनिधि चौहान की सिंगिंग का करियर काइंड ऑफ आप शुरू कर लीजिए, स्टेज परफॉर्मेंसेस दे रही हैं चार साल की उम्र से, और उनके टैलेंट को लेजेंडरी कंपोजर कल्याण जी आनंद जी की टीम ने रिकग्नाइज किया, उनके सर्कल में वो दाखिल हुई, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग लेने के बाद कल्याण जी की जो ट्रूप था लिटिल वंडर्स उसका वो हिस्सा बन गई, और स्टेज का एक्सपीरियंस मजीद यहाँ से पॉलिश होना शुरू हो गया, डिसिप्लिन लाइव परफॉर्मेंसेस कैसे करते हैं उसका फाउंडेशन यहाँ से एस्टैब्लिश हुआ सुनिधि चौहान की लाइफ में। सारेगामा पे जो अकाउंट है या उसके मुताबिक आप ये कह लीजिए कि उन्होंने सुनिधि चौहान ने क्लासिकल सिंगिंग भी की भी ट्रेनिंग ली और बैकग्राउंड वोकलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ खूबसूरत गाने हमने सुनिधि चौहान के सुने। मैं आपको बताऊं कि 1999 में फिल्म बड़े दिलवाले से उन्होंने एक्चुअली शस्त्र उनकी पहली फिल्म थी जिसमें सुनिधि चौहान ने गाना गाया था, उनके को सिंगर्स थे उसमें आदित्य नारायण और उदित नारायण, और म्यूजिक कंपोज किया था आदेश श्रीवास्तव ने। लेकिन जो जेन मतलब 1999 से उनके करियर का फुल फ्लेज आगाज हुआ जिसमें उन्होंने दहक फिल्म के लिए, बड़े दिलवाले, जानवर और मस्त फिल्म के लिए गाने गाए। मस्त फिल्म का हुई मैं मस्त मस्त और रुकी रुकी सी जिंदगी ने सुनिधि चौहान को जो है एक लाइमलाइट सी देनी शुरू करी, और उसके बाद एक के बाद एक फिल्में जैसे कि आगाज, बागी, बिच्छू, चैंपियन, फिजा, महबूब मेरे जो भी मैंने आपके लिए प्ले किया था, गैंग एंड सो मेनी मोर। तांता बाता वो कहते हैं ना बन जाता है, वंस यू गेट अ गुड हिट देन यू गेट सो मेनी ऑफर्स एंड जो चरखा चलने लगता है, एंड दैट इज़ हाउ सुनिधि स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड हमारी नज़रों में मजीद से मजीद आती गई। इसी तरह के गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ सुनिधि चौहान के। एक एपिसोड में हम उनके गानों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आई वी विल हैव एपिसोड 2 ऑफ सुनिधि चौहान ऑन बॉलीवुड स्पॉटलाइट नेक्स्ट ट्यूसडे एज वेल। फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी मूव आने वाली है कोई और आपने कहीं मूव करना है तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, नीड अगर आपने शिपिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, बॉक्सेस की, पूरा घर आपने मूव करना है या अपनी गाड़ी मूव करनी है, मतलब कुछ भी मूविंग की कोई भी नीड है आपकी, तो ऐसे SFL Worldwide is here to help you. You can get complete door-to-door shipping and moving services, not just to India, but within the US and worldwide as well. India se bhi aage ya phir within the US. So SFLWorldwide.com pe log on kijiye to check out more about them, or you can call them if you have any questions. That is 1-800-691-2335. 1-800-691-2335 is that number. Ye gana hai jisme bahut sare singers थे और उनमें से एक थी सुनिधि।

अच्छा जी, आपको पता है ना कि कुमार शानू जी आ रहे हैं डालस, और लाइव वो जो 90s का, या 90s ही क्यों, उनके गानों का जो नॉस्टैल्जिया है उनकी आवाज़, एक वक्त में आपको याद हो मैंने पिछले हफ्ते पूरा एक शो किया था कुमार शानू पे, जहां मैंने आपको बताया था कि ही वॉज सच अ बैंकेबल स्टार इन 90s, के उनके दरवाजे के बाहर लाइन लगी रहती थी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स की कि प्लीज़ हमारा गाना गा दीजिए, प्लीज़ हमारा गाना गा दीजिए, क्योंकि एक गारंटी सा हो गया था कि जिस मूवी में कुमार शानू का गाया हुआ कोई गाना होगा, जिस म्यूजिक एल्बम में, यूं कह लीजिए मूवी के म्यूजिक एल्बम में, उसका जो म्यूजिक एल्बम है वो जरूर बिकेगा। जैसे याद है ना आपको कि हम कैसेट्स खरीदा करते थे गानों की, फिल्मों में 5 गाने होते थे तो एक कैसेट पे, एक पांच एक साइड पे और 5 एक साइड पे, तो उस तरह की जो कैसेट बेचने का जो बैंकेबिलिटी थी वो कुमार सानू की सबसे ज्यादा थी। तो कुमार सानू जी आ रही हैं लाइव इन डैलस, प्लेनो में इनका कॉन्सर्ट है जी 9-11 सितंबर को, रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो। दिस इज अ ब्रांड न्यू लोकेशन, आप जरूर इसको विजिट कीजिए और चेकआउट कीजिए कुमार सानू साहब के इस कॉन्सर्ट को। साथ साथ ऑफ कोर्स कॉन्सर्ट है तो आप तो गा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और वो 90s का नॉस्टैल्जिया रीलिव कर सकते हैं। अगर आप 90s के बॉलीवुड को प्यार करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज अ कॉन्सर्ट दैट यू रियली रियली डोंट वांट टू मिस। यू कैन गेट योर टिकट्स एट eventbrite.com, या फिर आप कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, विच इज 214-869-2668। दिस इज प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एज वेल एज फॉर्च्यून ग्रुप। अच्छा, ये तो हुई ये बात, और अब मेरे पास है आपके लिए कुमार सानू के इस कॉन्सर्ट का एक गिव अवे टिकट, तो ये लाई हूं आपके लिए धमाकेदार खबर। अच्छा देखिए, बात हो रही है सुनिधि चौहान की और मैं देने लगी हूं आपको कुमार सानू का टिकट, लेकिन कनेक्शन मैंने निकाल लिया है, और कनेक्शन ये है कि अब जो गाना आप प्ले सुनेंगे अपनी आपकी समातों से टकराएगा, वो गाना है जी सुनिधि चौहान और कुमार सानू ने मिलकर इस गाने को गाया। कुछ चंदे के गाने हैं जो सुनिधि और कुमार ने एक साथ गाए हैं, बिकॉज बाय द टाइम आई थिंक सुनिधि का उरूज आ रहा था तो कुमार सानू साहब तो बहुत हजारों गाने गा चुके हुए थे, तो वो थोड़ा सा बैक स्टेज लेते जा रहे थे, लेकिन दिस वन सॉन्ग दैट वाज संग बाय सुनिधि एंड कुमार सानू टुगेदर इज व्हाट यू आर गोना लिसन नेक्स्ट। आपको मुझे कॉल करके, अगर आपको ये टिकट जीतना है तो 9722355555 पे कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है। बस जीत लीजिए ये गिव अवे, कुमार सानू का टिकट जीतने का मौका है। मैं आपको भी से बता दूं, जिस

सीक्वेंस में आपकी कॉल आएगी, उसी नंबर को मैं मैथ के फॉर्मूले में डालूंगी और आपकी लक ही आपकी विन का फैसला करेगी. आई विल नॉट चूज हु द विनर इज, योर लकी नंबर विल चूज द विनर. सो दैट इज हाउ द विनर विल बी डिसाइडेड. 9722355555 कॉल मी एंड टेल मी द मूवी नेम जिससे अब आप ये गाना सुनेंगे, संग बाय कुमार सानू एंड सुनिधि चौहान.

कुमार सानू का कॉन्सर्ट का टिकट आपके लिए लेके आई थी और ये गाना मैंने ढूंढ के निकाला था आपके लिए. सुनिधि चौहान और कुमार सानू ने मिलके इसका ये गाने का आई मीन दिस डुएट दैट यू विल लिसनिंग. और आपसे पूछा था मैंने बहुत सिंपल सा सवाल कि मुझे इसकी फिल्म का नाम बता दीजिए और आप सब ने बिल्कुल सही नाम बताया फिल्म का. और फिल्म का नाम है जी अजनबी. 2001 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इसका फिल्म का साउंड ट्रैक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था. दिस सॉन्ग वॉज संग बाय सुनिधि एज वेल एज कुमार सानू. अच्छा जी, ये तो हुई है बात और आप सबके फोन कॉल्स, पराची, सिद्धार्थ, सबा, स्वप्निल, रागिनी और अभी भी फोन लाइन्स बस कर रही हैं. बट हमारे कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है और जो है हमने एक लकी विनर पिक करना था और नंबर आ चुका है जी. जो हमारी आज की लकी विनर है वो है नंबर 3. और एक्चुअली नंबर, जी हाँ बिल्कुल, नंबर 3 हमारा नंबर निकला है और वो है सिद्धार्थ श्रीवास्तव. सिद्धार्थ कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये टिकट कुमार सानू लाइव आ रहे हैं. एक बार फिर आप सबको बताती चलूं, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. सिद्धार्थ, आपकी ईमेल आईडी और आपका नाम हमने नोट कर लिया है. प्लीज वेट, हैंग ऑन कीजिए, समबडी विल गेट बैक टू यू विद दैट टिकट इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी सून. सो और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारे साथ इसका हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी पार्टिसिपेशन इज व्हाट मैटर्स अ लॉट. इट रियली रियली मींस अ लॉट टू यू. जब आप टाइम निकालते हैं, फोन करते हैं एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड रियली मेक इट स्पेशल.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: बेटा 95% आए?
5: हाँ मम्मी.
4: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
4: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
8: वी नीड टू टॉक.
9: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
8: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
7: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
10: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
12: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज
3: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

0: And it is time now to connect you with our URA debt relief segment right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Hamare saath maujood hain Aman ji, jo hame batayenge ki how can URA debt relief help you make the right choices where your debt is concerned and your credit is concerned. Let's welcome him on the airwaves of Fanasia. Good afternoon, Aman ji. How are you doing?
1: गुड आफ्टरनून फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. सुनहरी किरण ये है कि आपके पैसे बच सकते हैं, डेट खत्म हो सकता है. तो ये आप कैसे कर सकते हैं, वो ये कि क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम पेमेंट आप भर रहे हैं उसका नुकसान करवा रहे हैं कि आज हो गई है पहली तारीख और क्रेडिट कार्ड की चिट्ठियां आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी इस हफ्ते. लेकिन वो गलती बिल्कुल मत दोहराइएगा जो पिछले महीने या पिछले साल से आप करते आ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरते जा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से उतरता नहीं है. रादर आप 42-45% इंटरेस्ट पे करते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आप डेट फ्री हो जाएं, क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाए, तो आप उरा को कॉल कीजिए. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है, बल्कि अगर कोई पर्सनल लोन है या गाड़ी रीपोजेस हो गई है या गाड़ी टोटल हो गई है, इस तरह के लोन्स भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं, कर्जा नहीं उतर रहा है, तो जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914 1-888-888-9914. यहाँ पे आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं तो कॉल मी एनी टाइम 9167763555 9167763555 अगेन 9167763555. सो इस महीने की मिनिमम पेमेंट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू कॉल मी 9167763555. आधा कर्जा माफ करवा दूंगा. थैंक यू.
0: Thank you so much, Amanji, as always, for connecting with us. We will talk to you next time.
1: Thank you.

और इसी के साथ आया है आपके लिए एक और गिव अवे. आज तो मैं आपके लिए गिव अवे की लाइंस लगाई हुई है मैंने चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन की तरफ से. ये गिव अवे है जी, $10 ऑफ आपको मिल सकता है ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. जी हाँ, आप वहां रेस्टोरेंट में जाइएगा, $50 का आपका बिल बनेगा, तो $10 ऑफ इफ यू विन दिस. प्लस आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि चंडीगढ़ बाइट्स जो एलन में लोकेटेड है, मंडे थ्रू फ्राइडे उनकी बड़ी एक्साइटिंग थाली बनती है. लंच स्पेशल होता है उनका जिसमें डिशेज रोटेट करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही थाली आपको हर रोज मिलेगी, हर रोज आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, लोकेटेड ऑन मैकडरमट ड्राइव. आप chandigarhbites.com पे विजिट कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स. अब चूंकि आज हमने इस हमारे बॉलीवुड स्पॉटलाइट में सेलिब्रेट किया सुनिधि चौहान को, कुछ ऐसे खूबसूरत गाने मैंने, अभी मेरे पास उनके गानों की बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है, बट उसके लिए हम एपिसोड 2 का इंतजार करेंगे. दैट विल बी नेक्स्ट ट्यूजडे ऑन बॉलीवुड स्पॉटलाइट. लेकिन इस वक्त आपको मुझे ये बताना है टू विन दिस $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन की सुनिधि चौहान की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मुझे बताइए 972-235-5555 और जीत लीजिए ये $10 ऑफ.

और इसी के साथ आपको बताती चलूं जी कि अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, देन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002. कंपेटिटिव रेट्स देते हैं, रिलायबल सर्विस है उनकी, और कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर नीड्स इज व्हाट इज देयर स्पेशलिटी. गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. 844-428-2808 is the number. TaraEnergy.com is the website where you can log on and check out more about them. TARA TaraEnergy.com. और इसी के साथ मैं दे रही हूँ आपको करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. इस वक्त यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे, ब्रिटिश पाउंड 0.73, इंडियन रुपी 94.84, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.39 पे स्टैंड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 277.35. पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर 151.82. नेपालीज रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर, जबकि बांग्लादेशी टका इस वक्त 122.65 पे स्टैंड कर रहा है. और इसी के साथ आपको गोल्ड प्राइस अपडेट के साथ मैं गाने की तरफ लेके जा रही हूँ. इस वक्त है जी गोल्ड प्राइस पर आउंस $4,328.68, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $139.17. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $3.26 की कमी देखने को मिली, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $101.50 की कमी देखी हमने. That's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran.

A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. This is the Bindaas Show on Fun Asia, जो कि आपके लिए आता है जी Monday to Thursday, and that is with me, यानी कि बंदा बिंदास, मार बिंदास. And I know यार थोड़ा सा मैं missing in action रहा ना, कल भी नहीं था, पिछले हफ्ते भी दो दिन गोल हुआ. A little caught up in some things that align with Fun Asia and what I do here at Fun Asia. I'm the director of sales. If you ever need your business to shine, then give me a call. 972-302-7012. Remember, I've been doing this for 20 years. 20 साल से मैं डालस में बहुत सारे businesses को बनाया है जी. The maqam that they are on today. I won't say कि मैं ही हूँ सब कुछ उसमें, but हाँ, मैं एक छोटा पार्ट जरूर हूँ that got that name to be a household name. So if you want your business to be a household name, give me a call. 972-302-7012. And we'll make sure together, हम सब मिलके जब काम करेंगे, success will always follow. Of course, this station is always celebrating birthdays and joyous moments. अगर आपकी लाइफ में आज जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, दुखती रख पे हाथ रख रहा हूँ किसी के लिए, बट इट्स ओके, व्हाटएवर इज योर जॉय, आई'd लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, एंड सो विल फन एशिया. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. एंड ऑफ कोर्स, अगर आपके बच्चों ने कुछ अचीव किया है, लेट्स गिव देम दैट पुश दैट दे डिजर्व. फॉर नाउ, व्हाट आई नो दैट आई हैव अ डियर लव फॉर माय रेडियो ऑडियंसेस, एंड आई एम श्योर यू डू द सेम. तो कहने की बात है ना, चांद तारे लाऊंगा, आज मैं भी कह देता हूँ यार, ये लो.

रहना जरा बच के, हट के जरा बच के, ये है डैलस मेरी जान, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, यहाँ पे जीना आसान है बिकॉज यू गॉट फनेजिया रेडियो विद यू, एंड इफ यू आर लिविंग इन ग्रैंड प्रेरी आर्लिंगटन या आप मैन्सफील्ड में रहते हैं, देन गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल दैट यू डोंट हैव टू ड्राइव कोसों दूर। अब आपको जैसे आपके बाप दादा कहानी सुनाते थे ना, बड़ी दूर जाना पड़ता था बेटा साइकिल पे, वो करने की जरूरत नहीं है आपको, नो टेंशन। आपके पास आ चुका है जी हिमालयन बाजार राइट इन योर नेबरहुड। डिस्कवर हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी, जहां पे मिलेगा आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स, हॉट स्नैक्स एंड एवरीडे एसेंशियल्स। ये लोकेटेड है राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360 इन आर्लिंगटन, एंड सर्व्स आर्लिंगटन, ग्रैंड प्रेरी, मैन्सफील्ड and all the areas around there. 5103 Magna Carta Boulevard, इनका address है. And if you are within a 5-mile radius, आपको groceries के लिए free delivery मिलेगी if you spend $50 or more. Every dollar is one point, so you get 200 points, you get 5% off. और शाम को याद रखिएगा कि वहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी, समोसे, पकौड़े और चाय और कॉफ़ी होती है भैया. So, mark your calendars, put that in your notes, wherever you have to. And if you're in Arlington, do Google Himalayan Bazaar, see how far they are, and 5 mile ke radius mein paiye free delivery.

0: बढ़िया बढ़िया, दो गानों के बाद लेते हैं जी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर बिकॉज ऑन द अदर साइड आई हैव सम गिव अवेज कमिंग अप फॉर यू ऑल टू एंजॉय. दिस इज फन एशिया रेडियो.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार.
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
7: अरे यार, घर मिल गया.
8: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
8: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
3: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
6: Floors clean.
8: Check.
6: Windows clean.
8: Check.
6: Kitchen clean.
8: Check.
6: Air ducts clean.
8: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया.
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया.
10: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. दैट्स 972-863-7772.
1: विजिट www.sanadainc.com टुडे.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, experience a smooth, secure and successful transaction. Call 972-897-1530 or connect to info@firstunitedtexastitle.com.
16: Family को चाहिए North Indian, friends को South Indian. अब जाए तो जाए कहाँ?
3: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
17: मतलब crispy golden dosa?
3: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, और एक delicious buffet जहाँ choices ही choices हैं.
17: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
16: Family dinner हो या friends के साथ celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.

जिंदगी जैसे मर्जी चल रही हो, दुख हो सुख हो, बंदा अंदर से परेशान हो, दिन में मतलब खपी खपाई हुई हो, बीवी हस्बैंड आपस में लड़े हों, बच्चों की चैं चैं की री री, दिमाग खराब हुआ पड़ा है जी, और हम सोच रहे हैं कि ये दिमाग को हम ठीक कैसे करें। तभी एक फोन आता है और बंदा आगे से बोलता है, ब्रदर जिंदगी तो तेरी है, हमने तो ऐसी जगह घेरी है। लोग कई लोगों से पूछते हैं, भाई साहब इतने पैसे लेके कहाँ जाना है आपने? यार बताओ, उसने आपसे पूछा है कि आपने इतने पैसे लेके कहाँ जाना है? पर भाई गॉड, दिल को सुकून सा होता है जब कोई बंदा आके बोलते ना, जिंदगी तो तेरी है ब्रो, मतलब चाहे हमारे, समझ रहे हो ना, जिंदगी वाट लगी हुई है, पटाखे बजे हुए चारों तरफ से, बट एक विश्वासी, कोई अंधविश्वासी, जैसे कि आजकल वोटर्स है ना हमारे हिंदुस्तान में, वैसे ही लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं, यार वाह भाई जिंदगी तो तेरी है। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। बड़े दिनों से 25 पे लैंड करने का मौका नहीं मिल रहा था, आज मिला है तो मैंने कहा मार दे चौका, देखा जाएगा। मार्विन, क्या हाल चाल DFW? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। आई मिस यू गाइज ऑलवेज एंड आई होप यू नो दैट। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा, जो कि हैं जी ख्वाजा मेरे ख्वाजा व्हेन इट कम्स टू एनी एक्सीडेंट केसेस। जिंदगी में कभी भी इस मुसीबत से अगर आप गुजरो, एक नाम याद रखिएगा, अटर्नी ओमर ख्वाजा, एंड दैट इज अ नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर। कोई जरूरत नहीं है नंबर अभी सेव करने की, बाय चांस, जो कि हम चाहते नहीं कि कभी हो, इफ यू आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, स्लिप या फॉल, कहीं गिर गए आप, एक नाम को गूगल करेंगे, अटर्नी ओमर ख्वाजा, टेल हिम व्हाट हैपेंड, ही विल मेक श्योर दैट ही फाइट्स फॉर यू, गेट्स यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, एंड दैट इज ओनली एट attorneyomar.com। टेकिंग यू टू द अगला गाना, उसके बाद और बातें तो आपसे बहुत करनी है ब्रदर, है ना, बातें तो बहुत करनी है, करते हैं।

0: अच्छा लेडीज का यार मेरे को समझ नहीं आता कि दरवाजे पे खड़ी रहेंगी दो दो घंटे बतियाती रहेंगी और बोलो अंदर आ जाओ, नहीं नहीं मेरे को जल्दी है, मेरे को जल्दी जल्दी है तो जाओ ना, यहाँ 2 घंटे से क्या छोले बेच रहे हो। ऊपर से देखो हमारी लेडीज हैं, भाभी हैं, कितनी सियाणी है ना, वो सीधा सीधा थोड़ी कहते हैं मेरा पति बेवकूफ़ है। ना ना ना ना ऐसे थोड़ी होता, कौन कहता है ऐसे बदतमीज लड़के मारवे, ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता है जब कोई बोलना चाहे ये बात। तो वो कहती हैं नहीं नहीं नहीं नहीं एक्चुअली ना मेरे जो पति है ना बड़े सीधे साधे हैं, भोले हैं बेचारे, ऐसे करके वो चलती है उस लाइन पे। मन में उनके कुछ और होता है, अब क्या होता है वो आप खुद पूछ लेना। मैं चला ब्रेक पे।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Heere moti, main na chahu.
4: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe एंड अपस्केल restaurant for the perfect family dinner.
10: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
0: What would happen to your business if a key owner, partner or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice. Sathiya!
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: Welcome back to your evening drive time show ka second part, which is the Bindaas show, only on Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. Bahut garmi hai, mujhe pata hai yaar, aap log bhi pareshan ho, main bhi pareshan hu, par kya kare, just get yourself hydrated man. Sirf ek cheez ka dhyan rakhna hai, hydration puri honi chahiye. और दूसरी बात इसलिए क्योंकि आप लोगों को सब मैं प्यार करता हूँ, जब भी आप गाड़ी से या मतलब पैदल अगर आप धूप में घूम रहे हैं ना, इफ़ यू हैव टू डू समथिंग इन द सन व्हिच इज़ नॉट इन योर कार, नॉट अंडर अ रूफ बेसिकली, तो आपको अपने सर को ना ढक के काम करना है. अब पूछोगे मार्विन गर्मी है इतनी ढक के काम क्यों करना है, यार ढक के काम इसलिए करना है क्योंकि भूसे में आग जल्दी लग जाती है ब्रो.
1: नेचर में कितना हरा है, आदमी जिंदा है फिर भी मरा है,
0: पता नहीं अंदर कितना गुस्सा भरा है. और गुस्सा पता है किस बात का, कहते हैं यार हमारा दुख सुख सुनने वाला कोई भी नहीं है. देखो सुख है तो मजे लो, और दुख सुनने वाला कोई नहीं है ना अगर आपका, तो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना दोस्तों. अगर आपका दुख सुनने वाला कोई नहीं है तो आप अपने दुख मुझे सुना सकते हो. मामूली दुख $200, बड़ा दुख $500, और साथ में रोने का $1,000. सिंपल सी बात है, ऐसी आपने कर रखा है इसको कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है भाई. आ जाओ स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर लो या मुझे वैसे ही मिल लो, सुख दुख बांटेंगे हैं.

Wonderful track there, Udit Narayan Saab ki awaaz, along with Karan Johar, and this was the movie Kal Ho Na Ho. What a beautiful movie indeed. Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, and the very pretty Preeti Zinta. I think she was on the peak of her career with this movie and some of the others that she did during that time. You're listening to your evening drive time show only on Fun Asia Radio. And you know, ye ek hamari aadat hai na complain karne ki. Aisa hi ek bichara Sharif Saadmi apne sasur ko complain kar raha tha. और कह रहा था कि पता नहीं आपने हमें कैसी बेटी थमा दी है ससुर जी, हमारे घर का सारा माहौल ख़राब कर दिया है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत चिक चिक करती है, बहुत तंग कर रखा है. ससुर जी सुनते रहे चुपचाप, फिर उठे गए किचन में और किचन में से दो शीशे के गिलास निकाले. शाम का टाइम हो गया था, शीशे के दो गिलास निकाले, शीशे के गिलास में जो गोल्डन कलर का डलता है वो उन्होंने डाला और आके दामाद के पास आ गए. और दामाद को कहते हैं, बेटा तू सोच, एक बार सोच के देख कि जिस जिस जिस टुकड़ा कपड़े का जो तेरे पास है ना, उसका पूरा थाल मेरे पास है ब्रो. बस ये कह के दोनों ने चीयर्स किया और बैठ गए. अच्छा, किसी ने एक और काम किया, किसी ने फिर से जाके ना सासू माँ को जाके बोला कि सासू जी, ये जो आपकी बेटी है, ये क्या आपने पीस पैदा किया है, इसका क्या कर सकता हूँ मैं, ये तो आपने मुझे गलत जगह बांध दिया. तो सासू माँ कहती, बेटा एक बात बता, तू ये कंप्लेन लेके मेरे पास क्यों आया. बंदा कहता है, जी मालिक, अब जहाँ प्रोडक्ट बनता है, बंदा तो मैन्युफैक्चर के पास ही जाता है ना कंप्लेन करने.

0: Finish Ravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Prince of Office, Dallas, Texas.
5: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
6: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
5: And pistachio lamb chops?
6: Full on flavor ka fusion.
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
10: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
14: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
12: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
11: डील कहाँ?
12: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
15: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
10: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info, 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

0: भाई गॉड, जितना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हम चलाते हैं ना, दिन भर लगे रहते हैं, ऊपर नीचे थम थम थम। मेरी तो बीवी का सोते सोते अंगूठा हिल रहा था, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो भैया जितना ये सिस्टम हम करते हैं ना, बाई गॉड अगर उतनी बस चला लेना हम बस, तो बाई गॉड जितनी की जायदाद हीरा ठाकुर की है ना, उतनी बड़ी ट्रैवल कंपनी होती है हमारी। हीरा ठाकुर ट्रैवल कंपनी के बहुत बड़े मालिक हैं।
1: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास।
0: कहां हमने बनना था हीरा ठाकुर, हम खीरा ठाकुर बन के रह गए। दे इंस्टाग्राम, दे व्हाट्सएप, दे फेसबुक, मेरे मन को भाया। मैं आज सुबह अवोकाडो काट के खाया, जिसको जो काटना है काटो और खाओ। अच्छा अवोकाडो क्यों अच्छा होता है काटने के लिए, कि एक तो काटना आसान है, एक तरह से छुरी डालो, घुमा दो पूरी एंड तक, खोल दो ढुप्पा खुल जाता है, ढक करके छुरी मारो उसके बोधी में, बोधी बाहर आ जाती है, चम्मच से एकदम निकल जाता है, ना प्लेट ना कपर ना कुछ, सीधा सीधा काम, इजी ब्रो।
1: फवरा है ये लोभी है, होशियार है, दो मखोटे इसके दो भारी तलवार।
0: तो व्हेन माय वाइफ सेज व्हाट कैन यू मेक फॉर ब्रेकफास्ट, तुम तो अपना ब्रेकफास्ट, मैंने कहा हट लिया दो अवोकाडो काट, ठुक हो गया।
1: फवरा है ये लोभी है, होशियार है, दो मखोटे इसके दो भारी तलवार है।
0: इट इज 6:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, दैट मींस कि मेरे पास अभी भी आधे से ज्यादा घंटा है आपसे बातें करने का, और आपका मनपसंद शो चल ही रहा है जी, तो वो चलता रहेगा। फिलहाल दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास स्टार रिहैब। दिस इज अ प्लेस वेयर यू डेफिनेटली हैव टू गो, स्पेशली इफ यू हैव एनी इश्यूज। मेरे गोडे दुखते हैं जी, मेरी पीठ में अड़कड़क होती है, अगर ऐसी कोई चीज आपके परिवार में होती है, बी दैट योर मॉम, योर डैड, योर सेल्फ, शियाटिका पेन है जी, मेरे हिप के नीचे से वो एक नस खींचती है बेटा, तुम्हें नहीं समझ आएगी, ये समझने की जरूरत नहीं है। गो टू टेक्सास स्टार रिहैब, दे विल गिव यू एक्सरसाइजेस, दे विल गिव यू अ न्यू रिजीम, दे विल मेक श्योर दैट योर न्यूट्रिएंट काउंट इज राइट, एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू द नेचुरल वे। इट्स वेरी इजी, अठाया पेन किलर और खा लिया, बट दैट इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, एंड नीदर दैट सोल्यूशन विल हेल्प यू। टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर, जो कि नया लोकेशन आपके लिए फ्रिस्को में खोला है, दे हैव अनदर वन इन इरविंग, राइट ऑफ 635 इन बेलाइन। फिजिकल थेरेपी हो, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, पेल्विक थेरेपी, मसाज थेरेपी एंड मोर, ऑल यू हैव टू डू ऑन माई ट्रस्ट, जाइए ऑन द वेबसाइट विच इज टेक्सास स्टार रिहैब .com, TexasStarRehab.com. Get all the information, get in touch with them, they will make sure that you are well taken care of. And this is from personal experience. Saath saath, if you are going through a surgery and you want rehabilitation after that, these are the people to get with as well. TexasStarRehab.com on the web.
1: सूर्य उगवला एक चिमणा

बाऊजी बाऊजी ताऊजी ताऊजी समझ मुझे कुछ नहीं आया। चिमना गाने का नाम है, बादशाह और दिव्या कुमार ने गाना बनाया। गाना टाइट है, म्यूजिक अच्छा लगा। अपने भी कहा टिंगड़ा डिंगड़ा ढा, अपन झूम रहे थे और अपने को लगा कि आप लोग भी झूमेंगे, इसलिए आई प्ले दैट ट्रैक फॉर यू। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द वन एंड ओनली द बिंदास शो ऑन फन एशिया रेडियो। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो एंड आई विल बी विद यू टिल 7 o'clock दिस इवनिंग। कहते हैं शादी, लोग कहते हैं ना शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ शादी हर आदमी को करनी चाहिए। ठीक है, हर आदमी को शादी करनी चाहिए, ये जानने के लिए कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा टेंशन ना ही लो तो अच्छा है। The legendary voice of Kumar Sanu with the unforgettable 90s is coming to Dallas. Get ready for a night filled with timeless melodies, unforgettable romance and pure 90s nostalgia. The voice behind some of Bollywood's most iconic love songs, जो कि हम सबको पसंद है जी, आपके लिए डालस आ रहे हैं, वो भी इन प्लेनो टू परफॉर्म लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आई डोंट थिंक कि आपको ये इवेंट बिल्कुल भी मिस करना चाहिए। दिस इज कुमार शानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो। सिंग अलॉन्ग द सॉन्ग्स यू ग्रो अप विद, जितने गाने आपके कुछ कुमार शानू के हैं आपको सबको आते हैं यार, लेट्स गेट टुगेदर, सिंग देम टुगेदर एंड गिव रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स सच अ शो के प्लेनो वाले भी हिल जाएंगे, यार ये किया क्या देसियों ने। एक्सपीरियंस द मैजिक मैजिक ऑफ एन एरा दैट स्टिल लिव्स इन आवर हार्ट। लिमिटेड सीट्स हैं जी इस शो में, जाइए अपनी टिकट्स राइट अवे लीजिए, गिव देम अ कॉल टुडे। टिकट्स आर अवेलेबल एट eventbrite.com, दैट्स eventbrite, eventbrite.com, और गिव देम अ कॉल 214-869-2668, 214-869-2668, प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप। कुमार शानू लाइव इन कॉन्सर्ट एंड आई वांट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट ही इज ऑल अबाउट। हियर वी गो।

बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, एंड दैट इज द वॉइस ऑफ कुमार शानू साहब दैट यू आर गोना बी विटनेसिंग लाइव इफ यू गेट योर टिकट्स इन टाइम. एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वन शो दैट यू डेफिनेटली डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस. बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने इनकी आवाज में हैं, उसमें से एक और गाना मैं आपकी नजर कर रहा हूँ. लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एज वेल. एंड इसके बाद लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. वंस अगेन दिस इज ऑन द 11th ऑफ सेप्टेम्बर एंड दिस इज एट दिस प्लेनो न्यू लोकेशन, और उसका नाम है जनाब the brand new Robinson Fine Arts in Plano. Tickets are available at eventbrite.com.

0: Make sure you get your tickets at eventbrite.com or give them a call for group tickets, 214-869-2668. That's Kumar Shanu, the legend, unforgettable 90s, performing on 11 September at the Robinson Fine Arts. I'm going to take a short commercial break and coming back for the last segment only on Funasia.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: We need to talk.
4: अब क्या हुआ?
3: Nothing. It's not you.
4: Oh no.
3: It's the distance.
4: Distance? We live 10 minutes apart.
3: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
5: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय
13: करो। अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो।
15: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
17: में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

चिटियां कलाइयां वे बेबी मेरी, वाइट कलाइयां वे, लिया दे यार चूड़ियां छुड़ियां, दिलवा दो यार फ्रिस्को में, इतने स्टोर हैं, ले जाओ इनको कभी कभी, दिला दिया करो चूड़ियां छुड़ियां। और आजकल तो डीलें भी बड़ी लगी होती हैं, कुछ खरीदते हो तो पेंडेंट फ्री मिलता है, वो इनको बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके लिए डायमंड की चूड़ियाँ ले आओ, पेंडेंट उसके लिए, समझ गए ना, उसके लिए। अरे मतलब आपकी बहन की बात कर रहा हूँ यार, या साली के लिए यार, हर चीज़ गलत थोड़ी सोचते होते हैं। खैर मेरा हो गया जी टाइम आज के लिए इजाज़त लेने का, बट विद अ प्रॉमिस कि अगर ज़िंदगी रही जी कल सुबह, फिर दिया ऊपर वाले ने एक और मौका ज़िंदगी की तरफ, तो आज कल शाम को फिर से आऊँगा आपके पास 5 से 7, गिविंग यू सम होलसम एंटरटेनमेंट विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो, जिसका नाम है जी द बिंदास शो। एंड दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आई विल डू द सेम फॉर यू। कहते हैं जी जो दुआ है ना, इसमें इतनी ताकत है कि अगर सच्चे दिल से शिद्दत से तुम कुछ भी मांगो, ये तो शाहरुख खान भी कह चुका है, तो कायनात पूरी खुद ब खुद उसको मिलने में, है ना, समझ गए ना। और फिर उसने वो डायलॉग भी मारा, जिंदगी में 2 तरह के रास्ते होते हैं, एक रास्ता बहुत मुश्किल, दूसरा बहुत आसान, तो आपको कौन सा लेना है, आपकी चॉइस है भैया। मैं अभी जाके रास्ते में देखूंगा, जहां पे जाम नहीं होगा मैं वो रास्ता लूंगा। कभी कभी इमोशन के अलावा भी सोच लेना चाहिए आशिकों। खैर गुड नाइट, अदियोस, शबा खैर, एंड आई विल सी यू टुमारो। मेरे बाद इपी द हिप्पी करेगी फुल ऑन ट्रिपी म्यूजिक के साथ आपको एंटरटेन। इफ यू हैवंट हर्ड हर बिफोर, आई एनकरेज यू टू लिसन टू हर, शी ब्रिंग्स सम न्यू वाइब टू फन एशिया। And with that, it is adios.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co. at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And number 926641.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
8: फ्लोर्स क्लीन
9: चेक,
8: विंडोज क्लीन
9: चेक,
8: किचन क्लीन
9: चेक,
8: एयर डक्ट्स क्लीन।
9: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
10: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
10: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
12: कैसे?
10: Page 3 eatery?
12: No, not another restaurant again.
10: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
12: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
13: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
14: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos. Talk to any witnesses that may have seen the accident. And ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.